हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को

0: के लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

0: छवि सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति के अपने संस्कारों पर निर्भर करता है कि वह अपनी कैसी सार्वजनिक छवि बनाना चाहता है। जो मनुष्य बेहतर काम करते हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। छवि धीरे धीरे बनती है, अपने कर्मों से बनती है। हम समाज में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर ऐसे परमार्थ के काम करते हैं जिसे साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। यह लोग जब लीक से हटकर काम करते हैं तो इनकी समाज में विशिष्ट छवि बनती है और आदर के पात्र बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग घायल पशु पक्षी, बीमार बुजुर्ग, बेसहारा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यह उनकी उत्कृष्ट छवि को समाज में प्रस्तुत करता है। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए रचा जाता है। व्यवसाय हो, राजनीति हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो या जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, छवि उसी व्यक्ति या संस्था की बनेगी जिसका जीवन सुचितापूर्ण होगा। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए ही रचा जाता है। जिसके जीवन में करुणा की भावना होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, दान की भावना होगी, जो दान पुण्य करता रहेगा, जिसके मन में लूट का भाव ना हो, वही इंसान अपनी अच्छी छवि बना पाता है। इस्लाम में ज़कात का निर्देश है, हमें अपने लाभ का 10% परमार्थ में लगाना चाहिए। हम जब अकेले में होते हैं, अपने आप को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आत्मा हमें सराहती है तो हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है और जो पुण्य करता है लोक छवि उसी की बनती है। हमारा जीवन सूरज की तरह होना चाहिए। सूरज इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसे देखता है या नहीं देखता। वह आता है, अंधेरे के खिलाफ एक सार्थक हस्तक्षेप करके शाम को अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पसरे अंधेरे को दूर करने वाला होना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहेंगे, उनकी सुंदर लोक छवि अपने आप बनती रहेगी। आज सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम ये संकल्प लेते हैं, ऐसी छवि बनाएंगे, करे जगत कल्याण, जब देखें दर्पण कभी हो खुद पर अभिमान।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित पर आधारित श्री रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या 140। कलाकार हैं ए हरिहरन, संगीतकार सतीश भाटिया।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थीं, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित पर आधारित श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की मुख्य मुख्य जानकारी। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश का। रात्रि 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन का। रात्रि 8 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। इन तीनों कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। सुबह 6:45 का समय रहेगा कार्यक्रम करसारी बात का, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी फसल चक्र के फायदों के बारे में। 7 का समय रहेगा हिंदी वार्ता का, जिसमें वार्ता होगी सशक्त नारी से सशक्त समाज के बारे में। वार्ताकार होंगी तृप्ति सेठ। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:15 पर। फिल्म संगीत आप पुनः सुन सकते हैं 12:40 पर, दोपहर 1, 3, शाम 4:30 पर और शाम 5:30 पर।

सुबह 8:45 का समय रहेगा कार्यक्रम विजन एंड वॉइस का, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी द गोल्डन बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में। वार्ताकार होंगे नीनू मेनन। कार्यक्रम हेलो जयपुर आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। हेलो जयपुर में फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:00। सिंधी कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। महिला जगत का समय रहेगा 1:30 का। 2:30 पर राजस्थानी लोक संगीत होंगे। गायक कलाकार होंगे अलाउद्दीन लंगा पार्टी। 3:30 का समय रहेगा एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। कार्यक्रम कुछ तो है तुझसे राबता शाम 4:00। युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 5:00। 6:43 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। 7:30 का समय रहेगा किसान भाई बहनों के कार्यक्रम खेती बाड़ी का।

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कर सारी बात।
4: करसा भया बेना, राम राम सा। करसा भया, आज आप बात कराला कि फसल चक्र अपनावा से आपने कौन कौन सा फायदा मिल सके छे। तो कोई भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में विभिन्न फसलों ने एक निश्चित क्रम से बोनो, जिसे फसलों से अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके और भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे, फसल चक्र के लाभ छे। इको उद्देश्य पौधा का भोज्य तत्व को सदुपयोग और भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा माने संतुलित बनाए रखबो छे। फसल चक्र के द्वारा माटी में उपस्थित पोषक तत्व को पूर्ण रूप से उपयोग करो जा सके छे। यदि एक ही फसल ने बार बार एक ही खेत में लियो जाव छे, तो उन खेत की माटी में कुछ प्रमुख पोषक तत्व की कमी हो जाव छे। इले पोषक तत्व की कमी ने रोकबा के तानी उचित फसल चक्र उपयुक्त छे। फसल चक्र की सहायता से मृदा का रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणा ने आपा बढ़ा सका छा। फसल चक्र ने अपनार कीटा की अधिक संख्या ने कम करो जा सके छे और कीटा का जीवन चक्र ने भी खत्म करो जा सके छे। फसल चक्र से माटी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो छे, जिका फलस्वरूप मृदा की अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो छे। सघन कृषि प्रणाली में जैविक खाद, संतुलित उर्वरक व जैविक उर्वरक का प्रयोग के साथ साथ सही फसल चक्र ने अपना वो अपने लिए बहुत जरूरी छे। अब बात करा फसल चक्र का प्रमुख सिद्धांत की, तो फसल चक्र निर्धारण से पहली किसान ने अपनी भूमि, जलवायु, फसल किसान की दैनिक आवश्यकता, बाजार की मांग, उपलब्ध संसाधन, लागत को स्वरूप और भूमि की उर्वरा शक्ति ने बनाए रखबा का उद्देश्य ने ध्यान में रखना चाहिए। फसल चक्र 1 से 3 वर्ष तक के तानी तैयार करो जाओ छे। इलिए फसल चक्र अपनाता समय आपने कुछ सिद्धांता को अनुसरण करना चाहिए, ज्या की दलहनी फसला के पाछे ए दलहनी फसला काम में लेनी चाहिए। कोई भी फसल चक्र में दलहनी फसला ने सम्मिलित कर वो अच्छा फसल चक्र की प्रमुख विशेषता छे। दलहनी फसला की जड़ा में ग्रंथियां पाई जाओ छे, जा में राइजोबियम जीवाणु पाया जाओ छे। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करे छे, जिसे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो छे, जो कि आगे बोई जावा वाली फसला के तानी बहुत उपयोगी साबित हो छे। गहरी जड़ वाली फसला के बाद उथली जड़ वाली फसला काम में लेनी चाहिए। ई क्रम से फसला ने बोबा से भूमि का विभिन्न स्तर में पोषक तत्व को समुचित उपयोग हो जाओ छे। अधिक पानी चाबा वाली फसला के पाछे कम पानी चाबा वाली फसला भी काम में लेनी चाहिए। खेत में लगातार अधिक पानी चाबा वाली फसला उगाता रहे बसे मृदा जल स्तर ऊपर आ जाओ लो, पौधा की जड़ा को विकास प्रभावित हो लो और अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेला। इलिए फसल चक्र में कम सिंचाई चाबा वाली फसला और अधिक सिंचाई चाबा वाली फसला ने एक क्रम में उगाना चाहिए। अधिक पोषक तत्व चाबा वाली फसला के पाछे कम पोषक तत्व चाबा वाली फसला भी उगानी चाहिए। अधिक पोषक तत्व चाबा वाली फसला लगातार एक ही भूमि में लगातार रह बस है, भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान हो जाओ छे और खेती की लागत बढ़ती चली जाओ छे। इलिए अधिक पोषक तत्व चाबा वाली फसला के पाछे कम पोषक तत्व चाबा वाली फसला ने उगाना चाहिए। अधिक कर्षण क्रियावा या भू परिष्करण चाबा वाली फसला के पाछे कम कर्षण क्रिया चाबा वाली फसला लगानी चाहिए। ई प्रकार का फसल चक्र से मृदा की संरचना ठीक बनी रहे छे और लागत में भी कमी आव छे। इके अलावा निराई गुड़ाई में उपयोग किया जाबा वाला संसाधन को दूसरी फसला में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त करे जा सके छे। 2-3 वर्ष में फसल चक्र में खेत ने एक बार खाली या पड़त छोड़ो जावे। फसल चक्र में भूमि ने पड़त छोड़बा से भूमि की उर्वरता में हो रहा लगातार नुकसान से बचो जा सके छे। इलिए अधिक पोषक तत्व चाबा वाली फसल से पूर्व खेत ने एक बार खाली अवश्य छोड़ना चाहिए। दूर दूर पंक्तियों में बोई जाबा वाली फसला के पाछे घनी बोई जाबा वाली फसला काम में लेनी चाहिए। वर्षा के दिना में सघन और भूमि ने आच्छादित करबा वाली फसल लगावा से मृदा क्षरण कम हो छे, जबकि दूर दूर पंक्तियां में बोई गई फसल से मिट्टी को कटाव अधिक हो छे। इसलिए ऐसी फसलों को हेर फेर होना चाहिए जिससे मृदा कटाव और उर्वरता को नुकसान रोके जा सके। दो तीन वर्ष का फसल चक्र में एक बार खरीफ में हरी खाद वाली फसल बोनी चाहिए। इस प्रकार का फसल चक्र से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे छे, जो कि भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करे छे। हरी खाद के द्वारा भूमि में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर होवे छे। इके तनी से नई ढीचा फसला को उपयोग कियो जा सके छे। फसल चक्र में साग सब्जी वाली फसल को समावेश होनो चाहिए। किसान की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के तनी सफल चक्र में साग सब्जी वाली फसल को समावेश होनो चाहिए। इलिए इके तनी खरीफ या रबी जायद की फसला में से एक फसल सब्जी वाली होनी चाहिए। फसल चक्र में तिलहनी फसल को समावेश होना चाहिए। घर की आवश्यकता ने ध्यान में रखता हुआ इशु फसल चक्र तैयार करना चाहिए जिसे एक फसल तेल वाली हो। एक ही प्रकार की कीट व बीमारियां से प्रभावित होबा वाली फसलों ने लगातार एक ही खेत में कौन बोना चाहिए। एक ही फसल तथा उही समुदाय की फसलों ने एक ही क्षेत्र या एक ही स्थान पर लगातार बोता रहे बस है कीड़ा व बीमारियां को प्रकोप बढ़ जाओ छे। इसे बचाव के तानी आवश्यक छे कि फसल चक्र अपनायो जावे। एक कुल की फसल के पाछे दूसरे कुल की फसल बोई जावे तो पिछली फसल का कीट ई फसल ने नुकसान कौन पुगावे। फसल चक्र ऐसो होनो चाहिए कि वर्ष भर उपलब्ध संसाधना को समुचित उपयोग होतो रहे। फसल चक्र निर्धारण के समय यो ध्यान रखना चाहिए कि किसान के पास उपलब्ध संसाधना जिया की भूमि श्रम पूंजी सिंचाई को वर्ष भर सदुपयोग होतो रहे और किसान की जरूरतों की पूर्ति फसल चक्र में समावेशित फसला के द्वारा होती रहे। बात करा फसल चक्र के लाभ की तो यो एक सुनियोजित फसल चक्र अपनावा से अपने बहुत सा लाभ हुए छे, जया की मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो छे। एक ही फसल निरंतर बोबा से अधिक प्रयुक्त होबा वाला पोषक तत्व की भूमि में कमी हो जाओ छे। फसल चक्र के द्वारा मृदा में पोषक तत्व को अवशोषण संतुलित रूप से होबा के कारण मृदा उर्वरता बढ़े छे। पोषक तत्व को समान अवशोषण हो छे तो फसलों की जड़ा गहराई तथा फैलाव में विभिन्न प्रकार की हो छे। इसलिए गहरी और उथली जड़ वाली फसला ने क्रम से भूभा से पोषक तत्व को अवशोषण विभिन्न गहराइयां पर समान हो छे। मृदा की भौतिक दशा में सुधार हो छे। जगड़ा जड़ वाली और अधिक गुड़ाई चावा वाली फसला ने फसल चक्र में सम्मिलित करवा से भूमि की भौतिक दशा अच्छी रहे छे। निराई गुड़ाई चाबा वाली फसला जहाँ की आलू प्याज बोबा से भूमि में जैव पदार्थों की कमी हो जाओ छे। यहाँ की पूर्ति दलहन वर्ग की फसला और हरी खाद का प्रयोग से हो जाओ छे। भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति होवे छे। दलहन वर्ग की फसला ने जहाँ की सनई ढेंचा मूंग भूमि में 3 या 4 वर्ष में एक बार जोत देबा से न केवल कार्बनिक पदार्थ मिले छे अपितु नाइट्रोजन भी मिले छे, क्योंकि यहाँ की जड़ की छोटी छोटी गांठा में नाइट्रोजन स्थापित करबा वाला जीवाणु हो छे। हानिकारक कीट रोग और खरपतवार की रोकथाम के तानी भी यो बहुत आवश्यक छे। एक फसल या ऊं जाति की अन्य फसला लगातार बोबा से वा में हानिकारक कीड़ा रोग और साथ उगबा वाली घास पात ऊ खेत में बनी रहे छे। उचित फसल चक्र से वर्षा का जल से भूमि को कटाव रुक जाओ छे और पोषक तत्व बहबा से बच जाओ छे। फसल चक्र का फलस्वरूप मृदा की भौतिक रासायनिक जैविक दशा में सुधार से मृदा का विकारा में कमी आव छे। समय को सदुपयोग भी हो छे। इसे कृषि कार्य उत्तम ढंग से हो छे। खेत और किसान व्यर्थ खाली कौन रहे। श्रम आय और व्यय को संतुलन बनो रहे छे। उपयुक्त फसल चक्र अपनाबा से किसान की घरेलू आवश्यकताओं जिया की खाबा के तानी अनाज दाला तेल सब्जियां की आपूर्ति आसानी से होती रहे छे। तो किसान साथियों, इन तरीकाओं फसल चक्र ने अपनार आप अधिक से अधिक अपनी फसलों से उत्पादन ले सका छा और किसान ने आर्थिक फायदो भी पहुंच सके छे। तो इसलिए आपने फसल चक्र अपनानो चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम करसा।

0: बात ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। श्रोताओं से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23वां राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 150,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठ नीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्याम् उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्याम मन्त्रिभ्याम भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णम् इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदी वार्ता।
3: हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता सशक्त नारी से सशक्त समाज। वार्ताकार है तृप्ति सेठ।
4: मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। नारी परिवार व समाज की धुरी है, यदि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो परिवार व समाज को स्वस्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता। नारी को सशक्त बनाए बिना न तो समाज का विकास संभव है और न ही राष्ट्र का विकास संभव है, क्योंकि नारी किसी भी राष्ट्र की आबादी का आधा हिस्सा है और यदि आधा हिस्सा ही कमजोर रह जाए तो उस राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ठीक ही कहा है, दुनिया के नक्शे को बदलने में दो चीजें सक्षम है, नारी और कलम। किसी दार्शनिक से पूछा गया कि इस देश के बारे में आपके क्या विचार हैं। दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए कि इस देश में नारियों का क्या स्थान है। सचमुच नारी विकास के बिना समाज उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। यद्यपि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं और मेरा समाज स्वस्थ बने, इसको साकार रूप देने में नारी की अहम भूमिका रहती है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक है। देश के भावी कर्णधारों में संस्कार निर्माण का कार्य एक नारी ही कर सकती है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने ममतामयी माँ की गोद में ही सत्संस्कारों की सौगात पाई है। चाहे वह राम हो या गांधी, वीर प्रताप हो या शिवाजी, सच में एक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में माँ के असीम योगदान की तुलना नहीं की जा सकती। माँ जन्म ही नहीं देती अपितु आदर्श जीवन जीना सिखाती है। महिला अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी बने, समाज की गलत मूल्यों से संघर्ष लेकर चलने वाली नारी किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को दुर्बल होने से बचाए, अपने आत्मविश्वास को जगाए और आत्मनिर्भर बने, तभी सशक्त बनेगा हमारा समाज। एक समय था जब नारी घर की चार दीवारी में कैद थी। प्रत्येक समाज में नारी पीड़ित, दमित और शोषित थी। ऐसा समाज कैसे प्रगति कर सकता है, किस दिशा में विकास की उड़ान भर सकता है। नारी क्षमता की उपेक्षा करने का अर्थ है समाज व राष्ट्र का अपमान करना। बदलते युग के साथ बदलती जीवन शैली में आज नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो हर क्षेत्र में नयापन तलाशती है, वो परंपरा नहीं प्रगति चाहती है। इसका साक्षी है भारत का स्वर्णिम इतिहास, आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रथम महिला राजदूत के रूप में सरोजिनी नायडू, सुनीता विलियम्स आदि महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य व व्यक्तित्व को निखारा है। नारियों ने कई ऐसे क्षेत्रों में भी कदम रखे हैं जिस पर आज तक पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता था। कई ऐसे काम जिन्हें कई पुरुष मिलकर नहीं कर सकते, उन्हें साधारण अनपढ़ नारियों ने कर दिखाया है। महिला को सशक्त बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है महिला में सामाजिक स्तर पर स्वाभिमान, आत्मसम्मान की भावना जागृत करना और पिछड़ी महिलाओं को सामाजिक रूप से सबल बनाना। आज नारी शिक्षा पर जोर देने की बहुत आवश्यकता है। नारी यदि शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को एक बेहतर रूप दे पाएगी और एक सशक्त समाज का निर्माण भी कर पाएगी। आज की नारी में शक्ति की नहीं जागृति की कमी है। यद्यपि शहरों में महिलाओं की बदलती स्थिति पर संतोष किया जा सकता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वास्तव में भारत बसता है, वहां महिलाओं की स्थिति पूर्ववत शोषित है। देश में हरियाणा व कश्मीर जैसे राज्यों में महिला लिंग अनुपात पुरुषों के मुकाबले काफी कम होता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार, विधवाओं की बदतर स्थिति, कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण, वेतन में भेदभाव, शिक्षा में कमी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कम आयु में विवाह इत्यादि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ बाधाएं हैं। जागरूक व क्रियाशील महिलाओं को आगे जाकर इन क्षेत्रों में सुधार हेतु योजनाबद्ध तरीकों से नियमित रूप से कार्य करने की बहुत ही आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार ने भी काफी योगदान किया है। सरकार शुरू से ही महिला अधिकारों को लेकर काफी जागरूक रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकास करने का अवसर दे रही है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को महिलाओं की सबसे पुरानी वो गंभीर समस्या कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा के लिए तैयार किया गया है। साथ ही कन्याओं को वित्तीय राशि भी प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन स्कीम, ये योजना महिलाओं को किसी समस्या से बचाने के लिए 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सहायता देती है, जिससे वो किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार न हो पाए। उज्ज्वला स्कीम, ये योजना शादीशुदा महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर में अच्छी सब्सिडी दिलवाती है, जिससे उनको लकड़ी के धुएं से खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी। महिला शक्ति केंद्र योजना में गांव की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। यहां पर विद्यार्थी व पेशेवर लोग महिलाओं को उनके अधिकार और योजनाओं की जानकारी देते हैं। पंचायती राज योजना में आरक्षण, साल 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण के प्रावधान किए थे। इससे गांव में रहने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। इसके बाद से ही विभिन्न राज्यों में बहुत सी महिलाएं पंचायत अध्यक्ष बनी हैं।

शक्ति समाज की सुषुप्ति है। लड़कियों के घटते लिंगानुपात ने समाज में एक असंतुलन पैदा किया है, क्योंकि नारी और नर दोनों से मिलकर ही है ये सृष्टि। लड़की को कमतर आंकने की सोच हमें खुद ही बदलनी होगी। यदि सोच नहीं बदली तो नारी का परित्राण नहीं होगा। महिलाओं को स्वयं सिद्ध करना होगा कि उनका अस्तित्व स्वतंत्र है और इस स्थापित सत्य से इनकार करें कि वो पुरुषों के बिना कुछ नहीं कर सकती। सशक्त नारी की क्रांति आज हर नारी के हृदय में होनी चाहिए, क्योंकि नारी सशक्त बनेगी तभी सशक्त होगा हमारा समाज। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही है नारी।

0: सशक्त नारी से सशक्त समाज। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार थी तृप्ति सेठ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है नए पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में ये पहला गाना आप सुन रहे हैं राजनीति फिल्म से, जिसे गाया है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा ने। बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत से साधा है प्रीतम ने।

गुलाबी नगरी में गुलाबी मौसम में इस गुलाबी गाने के बाद आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से बरसात के मौसम को और खुशनुमा बनाने का ये गाना। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत दिया है उत्तम सिंह।

दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत के बाद से ही। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत के सफर में अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

फिल्म का नाम है कलंक, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

फिल्म संगीत में इस गाने को आप सुन रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल समीर के हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत में ये गाना आप सुन रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत जतिन ललित का।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से ये गाना, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत के इस सफर में आइए सुनते हैं अगला गाना गुरु फिल्म से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार ने। बोल गुलजार के हैं और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

श्रेया घोषाल के गाए इस गाने के बाद आइए सुनते हैं हम आपके है कौन फिल्म से ये खूबसूरत गाना। इस खूबसूरत गाने को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, बोल देव कोहली के हैं और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गाने के बाद फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। समाचार 8 बजे हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेज़ी में और 8:30 पर उर्दू में रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियां और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाद

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के ओहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस दो रोज़ा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आज़ाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली तीन रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे, जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दी गई थी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विजन एंड वॉइस, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है।
1: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई, अरे जल्दी सी खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
2: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
1: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
2: फिर भी लल्लू के बापू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
1: वो भला क्यों?
2: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
1: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
2: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे, और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
3: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं, और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेय चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। श्रोताओं से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कराने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इससे पहले कल लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
1: यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा में भी कल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक 2006 के अधिनियम में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा, साथ ही विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। पीठ ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राज्य में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी का काम तेजी से किया जा रहा है। तेल समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1,85,00,000 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 38,00,000 की ईकेवाईसी अभी लंबित है। इनमें इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इसी मद्देनजर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जल्द ईकेवाईसी करवाने की अपील की है। श्री गुप्ता ने बताया कि रोजाना लगभग 20,000 उपभोक्ता ईकेवाईसी करा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिए जाने को कहा। साथ ही तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर FIR दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। श्री दिलावर ने घुमंतू परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम भेजने तथा वहां साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि विदेश पहुंचने पर युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो ठगी जैसे साइबर अपराध कराए जाते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों के ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। 12 जून से 30 जुलाई तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,500 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए, वहीं 18,000 से अधिक नाम हस्तांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1,32,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण किए गए। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के करीब 21,000 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। पाली जिले में आओ गांव चले अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में 10,000 विद्यार्थियों के लिए स्टडी टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि विद्यार्थियों की अच्छी हैंडराइटिंग उनके व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है, इसी उद्देश्य से स्टडी टेबल उपलब्ध कराई जा रही है।
2: देखिए, आओ गांव चले अभियान जो चल रहा है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। उसमें प्रमुख एक्टिविटी है कि प्रोजेक्ट सुलेख के तहत बच्चों को पूरे जिले में लगभग 20,000 बच्चों को लाभान्वित इससे अभी तक किया जा चुका है और पूरे जिले में हम इस तरह की 10,000 स्टडी बेंच देने का टारगेट है, जिसमें से लगभग 5,000 बेंचें अभी तक की जा चुकी हैं। बाकी 5,000 के लिए भी बातचीत चल रही है। ये विभिन्न स्कूलों में जाएंगी और बच्चों की हैंडराइटिंग उनका व्यक्तित्व का प्रमुख एस्पेक्ट होता है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बरसात हुई। भरतपुर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारा में देर रात अच्छी बरसात हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कैच द रेन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान में करौली जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जिला प्रशासन के निर्देशन में जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पौधरोपण, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रणगवा तालाब, मामचारी बांध, पांचना बांध तथा जिले के अन्य तालाबों, एनीकटों और जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोने और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार कर भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बांकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूरेट पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1-800-1234 या 1-800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाए समाधान।
4: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई, अरे जल्दी सी खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
5: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाए देती हूँ।
4: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
5: फिर भी लल्लू के बाबू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
4: वो भला क्यों?
5: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
4: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आ तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
5: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे और लल्लू के बापू, मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
6: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जयपुर।

नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे।

तो दोस्तों, गुलजार साहब की इन्हीं प्रेरक लाइनों के साथ ही गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका आप ही के फेवरेट शो हेलो जयपुर में। और आज आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु धींगड़ा की आवाज ओनली ऑन 101.2 एफएम। दोस्तों, कैलेंडर के पन्नों में आज की तारीख है 4 अगस्त, और अगर मैं ये कहूँ कि आज संगीत की दुनिया का गोल्डन डे है, या फिर ये कहूँ कि आज संगीत की दुनिया का नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जन्मदिन है उस फनकार का जिसके बिना हमारी प्लेलिस्ट अधूरी है। उदास हो तो चिंगारी कोई भड़के, खुश हो तो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और जब प्यार का इजहार करना हो तो पल पल दिल के पास। लगभग हम सब यही सदाबहार गाने सुनते हैं, है ना? ये गाने जो हर पीढ़ी के लोगों को लुभाते हैं, और रेडियो पर पहली पसंद भी उन्हीं के गाने होते हैं। उनकी अमर आवाज़ के लिए मुझे एक शेर याद आता है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, चलो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। गर वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, गर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो अहमद फराज साहब ने ये लाइनें शायद इन्हीं की आवाज़ के लिए लिखी हों। संगीत के बेताज बादशाह, सुरों के शहंशाह, वो कौन है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? ये आपको ज़रूर बताएंगे उन्हीं के गाए इस खूबसूरत हर दिल अजीज गाने के साथ। तो दोस्तों, आगे के एक घंटे का सफर बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 101.2 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से प्रोग्राम हेलो जयपुर। और आज के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं द लीजेंड सिंगर किशोर दा के बारे में। हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में अनसुना फैक्ट बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि किशोर दा ने कभी सिंगिंग नहीं सीखी थी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस इंसान की आवाज़ पर आज पूरी दुनिया झूमती है, उन्होंने संगीत की कभी कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, कभी उन्होंने गाना नहीं सीखा था। इवन बचपन में उनकी आवाज़ वैसी सुरीली नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनका पैर सब्जी काटने वाले चाकू पर पड़ा और बहुत ही गहरा जख्म हो गया। वो कई दिनों तक दर्द के मारे चिल्लाते रहे, जिससे उनकी गले की नसें ऐसी खुली कि आवाज़ एकदम सुरीली हो गई, यानी

तो दोस्तों, इस खूबसूरत गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो जयपुर में। और आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे यानी आपकी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ ओनली ऑन 101.2 FM। और आज हम बात कर रहे हैं हेलो जयपुर में किशोर दा से जुड़े कई रोचक और अनसुने किस्सों की। एक मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर उनकी आवाज़ पर बहुत सटीक बैठता है कि मुझको ढूंढ लेते हैं रोज़ नए बहाने से, तेरी आवाज़ वाकिफ है मेरे हर ठिकाने से। वो आवाज़ जो रूह में उतर जाए, ज़माना बीत जाए पर दिलों में ठहर जाए। और दोस्तों, सच में किशोर दा की सुरीली आवाज़ भी हमारे हर मूड का ठिकाना जानती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया एक और जादुई नगमा।

वेलकम अगेन टू 101.2 एफएम। और आज हेलो जयपुर के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं किशोर दा स्पेशल। अच्छा, आप लोग किशोर दा के कॉमिक, फनी और चुलबुले अंदाज से तो वाकिफ होंगे ही। जी हाँ, फनी अंदाज। जब आप उनका गाना हुडलाई ऊस सुनते हैं तो मन में एक यूनिक सी इमेज बन जाती है, जो असल में है भी यूनिक। इसे कहते हैं यॉडलिंग। और ये यॉडलिंग का स्टाइल सबसे पहले बॉलीवुड में किशोर दा ही लाए थे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो हेलो जयपुर, मेरे यानी ऋतु के साथ।

दोस्तों हेलो जयपुर के इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं किशोर दा की। दोस्तों किशोर दा जितने बड़े सिंगर थे उतने ही बड़े प्रैंकस्टर भी थे। असल में कुछ यूं हुआ कि अक्सर लोग अपने घरों के बाहर कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन भाई हमारे किशोर दा ने मजाकिया स्वभाव के चलते किशोर से सावधान का बोर्ड लगाया था। और जब एक डायरेक्टर उन्हें एक दिन पैसे देने आए और हाथ आगे बढ़ाया तो किशोर दा ने उनका हाथ मुंह में चबा लिया और हंसते हुए बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करने लगे कि आपने क्या घर के बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा। तो उनके इसी अंदाज के चलते मुझे वसीम बरेलवी साहब की दो लाइनें याद आती हैं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। मशहूर होने की ख्वाहिश हमें नहीं जनाब, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। किशोर दा कभी किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी धुन के पक्के थे।

0: लेगा तो
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

वेलकम बैक टू 101.2 FM और हेलो जयपुर में। आज हम बात कर रहे हैं किशोर दा की। दोस्तों, आपने किशोर दा के रोमांटिक कॉमिक किरदार को तो देखा, और अब आपको रूबरू कराते हैं उन्हीं के संजीदा और गहरे किरदार से। हम ये सोच भी नहीं सकते कि जो इंसान दुनिया को इतना हंसाता था, वो अंदर से कितना अकेला था। वो अक्सर में कहते थे कि इस मतलबी दुनिया में उनका कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो अपने बागीचे के पेड़ों से बात किया करते थे। इवन उन्होंने उनके नाम भी रख रखे थे। जब वो अकेला महसूस करते थे तो उनके दिल से जो दर्द निकलता था, वो उसे गानों का रूप दे देते थे।

और दोस्तों, उनके इस गाने में उनकी तन्हाई साफ झलकती है। महान शायर निदा फाजली साहब का ये शेर उन पर खूब फरमाया है। तो निदा फाजली साहब का शेर कुछ यूं है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है और खो गया वो सोना है। किशोर दा बॉलीवुड के वो हंसते खेलते चेहरे हैं जो सपने देखा, मगर उनकी तन्हाई सिर्फ और सिर्फ उनकी डायरी जानती थी। तो दोस्तों, ये तो हुई थोड़ी संजीदा बातें। अब बदलते हैं बातों का मिजाज और सुनते हैं किशोर कुमार का ये सदाबहार गाना।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

और दोस्तों, वक्त हो चला है इस खूबसूरत सफ़र को विराम देने का, लेकिन लेकिन किशोर दा का सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो कल भी हमारे दिलों में थे, वो आज भी हमारे दिलों में हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। जाते जाते गुलजार साहब के अंदाज़ में बस यही दो लाइनें कहते हैं कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं को डेडिकेटेड ये आखिरी गाना।

0: तो दोस्तों, किशोर कुमार के गाए इस सदाबहार नगमे के साथ ही हेलो जयपुर में किशोर दास स्पेशल प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हेलो जयपुर का ये सेगमेंट यूं ही जारी रहेगा विश्व दर्पण के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के दृढ़ रुख की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौते का अंतिम मौका, ईरान का बातचीत की खबरों का खंडन। और भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की।
2: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, संरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदौफ की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। लगभग $1 अरब के द्विपक्षीय व्यापार जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली यह बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का अंतिम मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के अनुरोध के बाद यह कार्रवाई टाल दी गई। श्री ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है, इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से कोई संबंध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए मैं चाहत।
1: गाजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्त्रीकरण समझौते पर चर्चा करना था। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गाजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लोदिनोव ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में यह भी कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गाजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्त्रीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात इस समझौते की घोषणा की, जो पिछले साल हुए व्यापक युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है। इसमें इसराइल से अपने सैन्य अभियान रोकने और गाजा में हमास और उसके सहयोगियों से सभी प्रकार के उग्रवादी गतिविधियों को बंद करने का आह्वान किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमरीकी राज्यों के समूह ने भारत सहित 60 देशों पर नए शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का तर्क है कि इस शुल्क से अमरीकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाएगी। 10 से 12.5% तक ये शुल्क 24 जुलाई को पिछले वैश्विक शुल्क की समय सीमा समाप्त होने के बाद लागू किए गए थे। श्री ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि नए उपायों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में जबरन श्रम से निपटना है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और अन्य राज्य नेताओं ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय से इन शुल्क को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि प्रशासन जबरन श्रम संबंधी चिंताओं को बहाना बनाकर व्यापक शुल्क लगा रहा है, जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत ने अपनी व्यापार नीति में संशोधन करके जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोम में रूस के दूतावास ने कल मॉस्को के एक रेस्टोरेंट में हुए घातक बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है और इसे रूस में तालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास ने कहा है कि शनिवार रात रेस्टोरेंट पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 19 घायल हो गए। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इस बम विस्फोट को एक क्रूर आतंकवादी कृत्य बताया। यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। यूक्रेन द्वारा रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए व्यापक ड्रोन हमले में 8 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने एंगल्स में एक सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जहां लंबी दूरी के रूसी बम वर्षक विमान रखे जाते हैं। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। बचाव दल खोजबीन में लगे हैं और कई अन्य अभी भी लापता हैं। स्थानीय आपदा निवारण कार्यालय के विशेषज्ञों की टीम को खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह आपदा सातकाने देबरे मितमाक सेंट मैरी मठ में हुई, जहां सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र जल अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए थे। समारोह के दौरान पास के पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिर गए। 11 पीड़ितों को मठ में ही दफना दिया गया है, जबकि अन्य को उनके गृह नगर ले जाया गया है। कुछ शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। घायलों को लगभग 70 किलोमीटर दूर देबरे ब्रहान के अस्पतालों में ले जाया गया है। मूसलाधार बारिश और जलवायु संबंधी चरम मौसम के कारण बरसात के मौसम में इथियोपिया में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल के वर्षों में इसी तरह की आपदाओं में सैकड़ों लोगों की जान गई है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नेपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर के साथ प्रिया कोंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के दृढ़ रुख की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौते का अंतिम मौका। ईरान का बातचीत की खबरों का खंडन। और भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो जयपुर ओनली ऑन 101.2 FM।

दोस्तों, एक बहुत ही सुरीली और मुस्कुराती सुबह के साथ एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आप इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, यानी आपकी रेडियो दोस्त ऋतु धींगड़ा को, ओनली ऑन योर फेवरेट प्रोग्राम हेलो जयपुर। तो दोस्तों, आज है मंगलवार, यानी हमारे और आपके जीवन को मंगलमय करने का वार, यानी हमारे खास एपिसोड करियर टॉक का वार, जिसमें हम बात करते हैं हमारे करियर की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, आजीविका की और तरक्की के रास्तों की। और अगले लगभग कुछ मिनटों का सफ़र हम इसी सब्जेक्ट को लेकर तय करेंगे। और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक शेर से। वो ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस खूबसूरत शेर के साथ ही आपको बता दें कि जिस तेजी से तकनीक आज आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से डिजिटल क्राइम यानी अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक ताजा आंकड़ों के अनुसार हर 39 सेकंड में दुनिया में एक साइबर हमला होता है। आज AI, डीप फेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी की खबरें अहम हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, जहां चुनौतियां होती हैं वहां करियर के नए रास्ते भी खुलते हैं। तो आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इस समय के सबसे हॉट करियर के बारे में, यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आगे हम जानेंगे कि कैसे आप इस क्षेत्र में कदम रखकर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

तो दोस्तों इस एनर्जेटिक गाने के साथ ही वेलकम बैक टू 101.2 एफएम और आज हम बात कर रहे हैं हेलो जयपुर के सेगमेंट में साइबर सिक्योरिटी की। दोस्तों मुझसे अक्सर मेरे युवा साथी पूछते हैं कि कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, फिर ये फील्ड ही क्यों चुनी जाए। तो आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया में 35 लाख से ज़्यादा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी है। फिर आज चाहे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हो या फिर देश के बैंकिंग संस्थान हो या फिर सरकारी सर्वर्स हों, सभी को अपने संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इस करियर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पर आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है। कई पोस्ट इस फील्ड में होती हैं, अलग अलग लेवल के उनके काम होते हैं। इन सब की जानकारी हम आपको देंगे इस बहुत ही मोटिवेशनल गाने के बाद। जुड़े रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से ओनली ऑन 101.2 FM।

0: एसबीआई अकाउंट का स्टेटमेंट एंड टीडीएस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की एसबीआई बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

वेलकम अगेन टू द शो। आप सुन रहे हैं 101.2 FM पर प्रोग्राम हेलो जयपुर, मेरे यानी ऋतु के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एज करियर की। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में पहली पोस्ट है एथिकल हैकर की।

एथिकल हैकर का काम बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि सरकार खुद उन्हें अनुमति देती है कि वो अपने कंप्यूटर की कमियों को खोज सकें, उन्हें सही करा सकें, ताकि कोई बाहरी अपराधी इनका फायदा न उठा सके। और दूसरी पोस्ट जो एक बेहतर करियर साबित हो सकती है वो है साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट की। ये बिल्कुल एक डिजिटल जासूस की तरह है। जब कहीं कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर कोई ऑनलाइन चोरी होती है तो ये विशेषज्ञ डिलीट और चोरी डेटा और उनके आईपी एड्रेस के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, करेंगे इनके बारे में और भी बातें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर का सेगमेंट करियर टॉक और आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एज करियर की। ब्रेक से पहले हमने बात की थी एथिकल हैकर और फोरेंसिक विश्लेषण की। इसी कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण जो पद है वो है क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आजकल सभी कंपनीज अपना डेटा क्लाउड पर सुरक्षित रखती हैं। इन विशेषज्ञों का काम होता है कि इस डेटा के चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार बनाना। दोस्तों इसके अलावा एक और पोस्ट भी है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजर। इन्हें साइबर की दुनिया के फायर फाइटर कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही साइबर अटैक होता है ये तुरंत एक्शन में आकर नुकसान को होने से रोकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर या फिर कौन सी पढ़ाई करके आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये बात हम आपको ज़रूर बताएंगे इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम हेलो जयपुर में बात कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक, बीसीए या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर की डिग्री नहीं ली है तो भी फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस फील्ड की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है तो भी आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि डिग्री से ज़्यादा यहाँ स्किल्स की वैल्यू है। यदि आप ज़ीरो से शुरू करें तो इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स की भी बुनियादी समझ विकसित कर सकते हैं। इसके बाद आप CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर या फिर सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं, जो आपको सीधे नौकरी दिलवाने में मदद करेगा। और रही बात सैलरी की, तो आपकी शुरुआत भले ही 4-5 लाख वर्ष में ही हुई हो, लेकिन बाद में यही सैलरी आपकी 15-20 लाख तक वार्षिक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। हेलो जयपुर के अगले सेगमेंट 11 बजे आपसे फिर हम मिलेंगे।

0: ही अकाउंट का स्टेटमेंट एंड टीडीएस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर

0: 1800-2100 पर और पाए समाधान।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

वेलकम अगेन टू हेलो जयपुर। तो दोस्तों, लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी तकनीकी पहेलियां सुलझाना पसंद है और आप भी देश की डिजिटल सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये करियर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। हेलो जयपुर की करियर सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी। हेलो जयपुर के अगले सेगमेंट फरमाइशी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो दोस्त ऋतु धींगड़ा को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर का सेगमेंट करियर टॉक। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अब समय है आप सबसे जुड़ने का। जी हाँ, फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम की महफिल का, जिसमें गाने होंगे वही जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि महफिल को सजाएंगे आपकी पसंद के गाने। तो दोस्तों, आप भी अपने गाने की फरमाइश हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 2200-600-2200-700 2366-477। जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। तो दोस्तों, जब तक आप फोन लाइन से जुड़ते हैं, नंबर मिलाते हैं, सुनिए ये गाना आपके रेडियो सेट पर।

तो श्रोताओं, पहली फरमाइश हमें मिली है फूल जहाँ की जयपुर से। ये सुनना चाहती हैं दूध का कर्ज फिल्म से ये गाना।

तो श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है अशोक सिंह जी की जबलपुर एमपी से। ये सुनना चाहते हैं आया सावन झूम के इस फिल्म से ये गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, आप भी अपने गाने की फरमाइश हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 2200600, दूसरा नंबर है 2200700 और 2366477, और साथ ही जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। और श्रोताओं, इसी कड़ी में अगली फरमाइश हमें मिली है मोहम्मद रफीक की मूंगड़ा बालोतरा से। ये सुनना चाहते हैं हमारी याद आएगी फिल्म से ये गाना।

तो श्रोताओं, फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है कैलाश सिंह जी की, जिला अलवर राजस्थान से। ये सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गाना।

श्रोताओं, इस गाने के बाद अगली फरमाइश हमें मिली है रतनलाल सुथार, आशा सुथार और भारती सुथार की, कारुंडा तहसील छोटी सादरी से। ये सुनना चाहते हैं दूर की आवाज़ फिल्म से ये गाना।

0: अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का टट्टू।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, आप भी अपनी फरमाइश हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 2200600, दूसरा नंबर है 2200700, नंबर एक और है 2366477, और साथ ही जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। और श्रोताओं, इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है नारायण पटेल, रीनल पटेल और वीना पटेल की, जौहरी बाजार जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं जोहार महमूद इन गोवा फिल्म से ये गाना।

और श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है मुनीजा और सलीम की शास्त्री नगर जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं क्रांति फिल्म से ये गाना। आइए मिलकर सुनते हैं

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है शशि बेनीवाल जी की, नाड़ी का फाटक जयपुर से। ये सुनना चाहती हैं चल कावड़िया शंभू नगरिया फिल्म से ये गाना।

श्रोताओं, इस गाने की फरमाइश हमें मिली है नीलम जी, राधिका जी और रोशन जी की, जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं मासूम फिल्म से ये गाना।

0: आपने सुना हेलो जयपुर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल,
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दे दें आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सिंधी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:10 से। महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे दिन में 1:30 से।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 से। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे अलाउद्दीन लंगा और साथी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

हफ्ता दिन में 3:30 से सुनेंगे। शाम को 4 से सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम कुछ तो है तुझसे राबता। फिल्म संगीत के कार्यक्रम होंगे दिन में 12:40 पर, दिन में 1:05 पर, दोपहर 3 से और शाम को 4:30 से। अलावा इसके शाम को 5:30 पर और शाम को 6:05 पर भी आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुनेंगे। युवा साथी अपना युवाणी कार्यक्रम शाम 5 से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी, अलावा इसके रोज़गार सूचनाएं सुनवाई जाएंगी, साथ ही युवा साथी फिल्मी गाने भी सुनेंगे।

शाम को 7 बजे से आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा से की गई बातचीत। विषय रहेगा कृषि उत्पादन में ड्रोन की उपयोगिता। बातचीत के अलावा लोकगीत सुनवाए जाएंगे, साथ में बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी करवाई जाएगी। किसान भाई अपना खेती बाड़ी कार्यक्रम शाम को 7:30 से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर शंकर बाबू से बातचीत। विषय रहेगा जल संरक्षण विधियां। और अब जानकारी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। 8:00 संसद समीक्षा, 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 9:30 पर मनी टॉक और मंथन, 10:00 से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

कार्यक्रम विवरण में ये थी जानकारी आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। रिजर्व सुनिए सिंधी कार्यक्रम।

नमस्कार साथियों, हाजिर आया मां वीना अज जो सिंधी प्रोग्राम खणी। अज आहे महीने जो पहरो मंगल। अज असा तमा जे लाए खणी आया आयूं मजेदार ए सिख्या देण वारो नाटक दिल लगी। त अचो अज जो प्रोग्राम शुरू था कयूं इन नाटक सा।

0: अरे भाई मंगा, तू भी कै वक्त अड़ी गाल शुरू करे छड़ी नवाई की बस। अरे यार खिलने खिलने पेट सूर करे रहे हुआ। हाँ हाँ वट मिठाई खा यार, तू मिठाई खा।
1: ये मिठाई वाली केड़ी खुशी में
0: अरे यार तू मुझे घर आए इतने बैठे खिलाए खिलाए मुझे पेट में सूर करे चली।

0: हाणे भला पंहिंजे घर वञी रहियो आई इन ई ख़ुशीअ में मिठाई खा।
1: छा
0: हा
1: पंहिंजे घर वञी रहियो आहियां इन ख़ुशी में? हाणे त मिठाई खाइणी ई पवंदी भाई मुंहिंजा। पर यार शोभा, हिकु ॻाल्हि त ॿुधाए, तूं एतिरी अख़बार छो पढ़ंदो आहीं यार?
0: रदीअ में विकिणंदो आहियां, पढ़ंदो कोन आहियां। हा अरे यार मंगाराम, अखबार पढ़ण जो बि हिकु अलॻि ई मज़ो आहे। अरे जेसि ताईं सॼी अख़बार पढ़ी न वठूं, बुख ई कीअं न लॻंदी आहे।
1: इहो तूं बिल्कुलु ठीकु चई रहियो यार, बिल्कुलु सही चई रहियो आहीं। अरे भई चवंदा न आहिनि, पसंदि पंहिंजी पंहिंजी ऐं ख़्याल पंहिंजा पंहिंजा।
0: तूं कुझु बि चओ मंगा, अखबार पढ़ण सां ॿियो कुझु न त दिमाग़ जी कसरत त थी वेंदी आहे। अरे मंगाराम ॿुध ॿुध ख़बर ॿुध।
1: ॿुधाए।
0: ससु सहुरे ॾाजे जी लालच में पंहिंजी नूंहं खे जान सां ख़तमु करे छॾियो। सत्यानाश थियसि।
1: छा छा चई? नूंहं खे ख़तमु कयूं? यार शोभा, इहा ख़बर तूं वरी पढ़ी ॿुधाए चङी तरह, पूरी ख़बर ॿुधाए यार।
0: अरे यार मंगाराम, छा पूरो पढ़ी ॿुधाए, सभु तरफ़ इहा ई भाए लॻी रही आहे। ॾाजो ॾाजो, सिर्फ़ु ॾाजो खपे। हाणे हिन में वरी हुन वेचारी न्याणीअ जो कहिड़ो कसूर? छा ज़मानो अची वियो आहे मंगाराम, ग़रीब इंसान केतिरा न ॾुख सही, पंहिंजी औलाद खे पाले थो, पोसे थो, पढ़ाए लिखाए थो, कहिड़ा कहिड़ा न सुपिना थो ॾिसे पंहिंजी औलाद वास्ते। कहिड़ा कहिड़ा अरमान हूंदा आहिनि हुन ग़रीब माउ पीउ जी दिलि में पंहिंजी न्याणियुनि लाइ। पर ॾेती लेतीअ जी मार हर इंसान खे लाचार, बेबस ऐं कमज़ोर बणाए रखियो आहे। वेचारो कर्ज़ु खणी बि पंहिंजी धीउ खे सुखी ॾिसणु थो चाहे, पर इहे पैसे जा लालची गिद गिद्ध वांगुरु इंसान जो खून पी रहिया आहिनि।
1: बिल्कुलु सच चई रहियां तूं। अलाए छा अची थियो आहे ज़माने खे, हाणे चइनी पासे लॻोन केर को ॾेती लेती जी बाहि। हर माण्हू शादीअ में ॾेती लेती जी रटा रहियो आहे, मूंखे टीवी खपे, मूंखे कार खपे, मूंखे हीउ खपे, मूंखे हूड़ खपे। कमाल आहे यार, मूंखे सम्झ में नथो अचे त ही माण्हू सोचनि कनि था हुनजे घर में न्याणी आहे, पर केरु सम्झाए हिननि चरनि खे, केरु सम्झाए?
0: मां त भाई कसम खाई चुको आहियां, रमेश जी शादीअ में न त मां ॾाजो वठंदुसि ऐं नई निमू जी शादीअ में नाणो ॾींदुसि।
1: वेरी गुड, ॾाढो सुठो शोभ राजा, ॾाढो सुठो। मां तुंहिंजा ख़्यालात ॿुधी तमामु ख़ुशि थी वियो आहियां। तो जहिड़े इंसान ते असांजे समाज खे फ़ख्रु हुअणु खपे। अरे भाउ यार, काफ़ी टाइम थी वियो आहे, हाणे मां निकिरां थो यार, दुकानु खोलण जो टाइम थी वियो आहे। ठीकु आहे, वरी गॾिजूं था भाई, ध्यानु रखिजो पंहिंजो।
0: ठीकु आहे मंगाराम, ठीकु आहे।
1: हलो मंगाराम, हलो भाई, हलो।
0: हलो, यस, अच्छा अच्छा, निमू सां? हा हा, होल्ड कजो होल्ड कजो। निमू, ओ निमू पुट।
2: जी डैडी।
0: तुंहिंजो फोन अथई पुट।
2: फोन? हा हलो, हा हा, मां निर्मला। केर? अरे पुशी, तू दिल्लीअ मां कॾहिं आई आई? छा ओफो, ऐं मां तोखे अॼु हफ़्ते खां पोइ यादि अचां? छा हा, रमेश जो नाटक सुभाणे? हा हा, 7 बजे आहे। हा यस यस, ज़रूरु अचिजां, ज़रूरु। ठीकु आहे, ओके, सी यू।
1: निमा, निमा, निमा।
2: अरे अशोक, अॼु तूं ॾाढो परेशान ऐं थकियल थो नज़र अची। अरे नाटक त अञा सुभाणे आहे, पर तुंहिंजी दिलि त अॼु ई पई थी सुस्त नज़र अचे।
1: अरे तोखे छा ॿुधायां निमो, सत्यानाश थी वियो आहे, सवा सत्यानाश, न न साढा सत्यानाश। अरे नमो, मूंखे त उथंदे वेहंदे जागंदे सुम्हंदे बसि थिएटर में रुगो माण्हू ई माण्हू नज़र ईंदा आहिनि निमो, जेके असांजे स्वागत में पंहिंजे हथनि में जूता, चंपलियूं ऐं टमाटा खणी करे बीठा आहिनि।
2: वेरी गुड, ही सीन जोरदार वेंदो।
1: अरे तोखे सीन जी लॻी आहे निमो, ऐं असांखे पंहिंजी जान जी पई आहे।
2: वॉट, आर यू सीरियस?
1: यस।
2: पर ॻाल्हि छा आहे?
1: अरे निमो, असांजे नाटक जी हीरोइन मंजूअ खे
2: छा थियो? मंजू खे?
1: अरे मलेरिया थी पियो आहे, बुखार, 103, 104, 105। अरे अब्बा रे, हाणे सुभाणे जे नाटक जो छा थींदो?
2: ओफो, मूंखे लॻे थो बुखार हुन मंजूअ खे न तोखे थियो आहे। रामू, ओ रामू, हिकु ग्लास बर्फ़ जो खणी अचु।
1: अरे निमो, तोखे त रुगो मज़ाक सुझी रही आहे। अरे असांजी दिल खां पुछ, असांजी कहिड़ी हालत बणजी रही आहे निमो।
3: हा वठो मेम साहब, बर्फ़ जो थधो थधो पाणी पियो।
2: हूअं अशोक, तुंहिंजे हीरोइन जी प्रॉब्लम हल थी सघे थी।
1: वॉट, कीअं निमो?
2: छोकिरी जो मेकअप कराए ऐं रामू हिन रोल लाइ बिल्कुलु तयार थी वेंदो। किए रामू?
3: अरे बिल्कुल मेम साहब, छो ना नाटक करण में असां भी कंहिंखां घटि थोरी आहियूं। छोकिरीअ जो मेकअप करे त मां बिल्कुलु हिकदमि कैटरीना कैफ लॻंदुसि।
1: अरे भॻवान जे नाले सां हाणे चुप थी वञो।
4: ओह, अमिताभ बच्चन हिते वेठो आहे। अरे भाई, तुंहिंजी हीरोइन त नाटक में कमु करण लाइ मना करे रही आहे मलेरिया जे बहाने।
1: अरे बहानो न रमेश, हले हले हले हले, हाणे तोखे छा ॿुधायां, हुनखे सचमुच मलेरिया थी वियो आहे रमेश। अञा हाणे हाणे मां हुनजे घरां थी आयो आहियां।
4: अरे यार, उहो सभु त ठीकु आहे, पर सुभाणे जो छा थींदो? केतिरा दफ़ा मना कयो त मैं कि नाटक अगरि करणो हुजे त सोचे सम्झी कंदो कर, हाणे भुगत।
1: अरे पर इहो सभु तूं कंहिंखे चई रहियो आहीं?
4: पंहिंजे पाण खे यार। नाटकनि में हिकु त छोकिरियुनि जो पहिरीं सां ई अकाल लॻो पिया, जीअं तीअं छोकिरी तयारु थिए थी ऐं मौके ते हुन ते मलेरिया थी थो वञे, पलंग पकड़े सुम्ही थी रहे। धत, केतिरा भेरा चयो त मैं त हिन नाटकनि जे चक्कर में न पओ न पओ न पओ, पर तूं आहीं की?
1: What? मां?
4: अरे तोखे न, मां पंहिंजे पाण खे चई रहियो आहियां।
1: अच्छा,
4: कीअं थींदो ॿी हीरोइन जो? अरे तू चुप छो आई, कुछ सोच।
1: अरे छा सोचा यार रमेश, छा सोचा, मुझे तो दिमाग ही कम नथो करे।
4: आइडिया?
1: आइडियो?
4: हाँ, इज्जत बची सके थी असांजी। निमू, निमू तू तू असांजी इज्जत बचाए सकी थी।
2: मां मां मां एक्टिंग? अरे मुखे तो एक्टिंग जी एबीसी खबर कोने।
1: यस यस यस रमेश, बिल्कुल यस थी सके तो। निमो हिन में काई कठिनाई वाली गाल कोन थई, ऐं पोए वरी तुंहिंजी त रिहर्सल बि ॾिठल आहे न निमो? निमो प्लीज।
3: हा हा मेम साहब, इहो तव्हां ई कयो प्लीज।
4: हा निमो, असांजी इज़त असांजी आबरू तुंहिंजे हथनि में ई आहे। अगरि तूं तयारु न थिए त सुभाणे शाम जो ठीकु 7 लॻे सॼी जनता असांखे भाॼी सम्झी खाईंदी। स्टेज ते चारों तरफ़ सड़ियल टमाटा, केलनि जूं खलूं, सड़ियल गोभियुनि जा गुल नज़र ईंदा। असांजी इज़त बचाए निमो।
1: प्लीज निमो, प्लीज प्लीज।
2: बस बस, हाणे ही एक्टिंग बंदि कर। मां नाटक में कम करण लाइ तयारु आहियां, पर हिकु शर्त ते।
1: शर्त?
2: यस, शर्त। डैडीअ खे पतो न पवणु घुर्जे।
4: तूं हिन ॻाल्हि जी चिंता न कर, बिल्कुलु चिंता न कर निमो। डैडीअ खे हिन ॻाल्हि जी हवा बि न लॻंदी।
2: ठीकु आहे, मां हीरोइन लाइ तयारु आहियां।
4: त ठीकु आहे। अरे रामू, तूं अञा हिते ई बीठो आहीं। अरे तूं मतां डैडीअ खे।
3: अरे भॻवान जो नालो वठो साईं, भॻवान जो नालो वठो। मुंहिंजो मुंहुं हिन ॻाल्हि वास्ते बिल्कुलु बंदि रहंदो।
4: वेरी स्मार्ट मैन। ठीकु आहे, त थी वञे रिहर्सल।
2: रिहर्सल हिते अगरि डैडी खे?
3: तव्हां मालिक जी चिंता न कयो, बिल्कुलु बि चिंता न कयो मेम साहब। उहे अंदरि दरवाजो बंदि करे आराम करे रहिया आहिनि, ऐं वरी बि ईंदा त मां सीटी वॼाए तव्हांखे ॿुधाए छॾंदुमि। तव्हां शुरू कयो, शुरू कयो।
2: कहिड़ो सीन?
4: सीन जिते प्रीतम खे मथे में सूर थियो पए, लता घबराइजी थी वञे, रोए थी, डॉक्टर खे थी फोन करे, उहो ई सीन।
2: यस, इहो सीन त मूंखे बिल्कुलु यादि आहे।
4: गुड, त थी वञे। यस अशोक,
1: हा
4: स्टार्ट।
1: हा बिल्कुलु, मां हुते साम्हूं वञी करे सुम्हां थो ऐं तूं एक्शन चइजे। ठीकु आहे?
4: ओके।
1: हा
4: एक्शन।
1: अरे लता, अरे ओ लता, अरे अबाड़े, अरे लता मुझे मथो।
2: छा थियो तव्हांखे? हे भॻवान, छा थियो?
1: अरे लता, हे भॻवान, अरे अहिड़ो सूर त मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगीअ में कोन थियो आहे। लता लता जल्दी कर।
2: छा कयां?
1: अरे गोरी गोरी खणी आ लता।
4: यस, गुड गुड गुड। नौकर, नौकर की आवाज़ गई। वासु वासु
2: वासु, अरे वासु।
4: रामू, प्रॉक्सी प्रॉक्सी वन।
3: जी जी जी साईं, जी मैम साहब।
2: जल्दी वञ ऐं मथे जे सूर जी गोरी खणी अच, जल्दी वञ।
3: जी जी जी मैम साहब।
1: अरे अरे लता, हाय हाय हाय।
2: जी प्रीतम।
1: लता, मूंखे लॻे थो त ही मथे जो सूर अॼु मुंहिंजी जान खणी करे रहंदो। लता
2: न, न प्रीतु, ये न चओ।
1: अरे मां बिल्कुलु सच चई रहियो आहियां लता।
4: Yes,
1: अरे
4: yes.
1: मां बिल्कुलु न छापी करी लता। अरे मुंहिंजी जान बि बची लता।
2: हे भॻवान, हाणे मां छा कयां?
1: लॻे थो त मुंहिंजी हाणे बचण जी काई बि उमेद कोन्हे लता।
2: न चओ, तव्हां खां पोइ मुंहिंजो छा थींदो? मां भाॻण के छिड़ा वेंदस न तुहां बिल्कुल ठीक वेंदा बियो बियो मां डॉक्टर के थी फोन करयास फोन करी थी घुरयास हां तुहां ठीक थी ना बिल्कुल ठीक थी ना
1: जल्दी करिस
2: हेलो हेलो हेलो डॉक्टर हां डॉक्टर मैडम हां डॉक्टर साहब हां इनन जी तबीयत डाडी बिगड़ी पई है हां तुहां जल्दी अचो हां मैडम
4: यस निमो घर जो पतो बधाईस
2: हां डॉक्टर हां तुहां जल्दी अचो हां हां घर जी एड्रेस डी अरुणा नेहरू नगर हां हां यस डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू हां तू चिंता न कर प्रीतू पेनो पाणे के संभाल
1: अरे अरे अपारे ई सूर तो बर्दाश्त खा बाहर आ लता
3: हां उठो दीदी गोरी है पानी
2: हां हां गोरी गोरी पी हां पानी पी गोरी तू बिल्कुल ठीक थी वेने प्रीतू तू बिल्कुल ठीक थी वेने
4: वेरी गुड निमू बस हाने डॉक्टर जी एंट्री है तू इन्हीं हालत में हर घड़ी बाहर निहारिंदी रहो अचानक बाहर घंटी बजंदी हाने तू जल्दी सा उठी करे दरवाजो खोलण ले बाहर वेंदी है
5: यस यस वेयर इज पेशेंट अरे भाई छा थियो छा मुझे अचण खा पहरी ही मरीज भगवान के न न न न न इहो किए थो थी सके जिंदगी में पहरो दफो कैम के फोन करे पेंजे घर घुरायो ए अज पहरो दफो ही
4: पर मैडम ता आयो केर
5: छा मतलब
1: मतलब यो की तवा मैडम आयो केर
5: अरे भाई मां डॉक्टर वांदी बसराणी तवा ही त मके फोन करे हिनन जी तबीयत डाडी खराब आए जल्दी अचो डी नेहरू नगर में अचन लाए चयो
4: व्हाट ही निमो
1: निमो
2: मु मुखे लगे थो तकड़ तकड़ में सचमुच ही डॉक्टर के फोन लगी हुई
1: है अरे मरी व्यासी लगे तो फोन पर मुखे लगे तो कि हूं तकड़ तकड़ में वो दवा वाली गोरी मां खाई हुई है
2: पर गोरी तो रामू खनी आयो
1: अरे तो ही तो मुखे गोरी अच्छा था खाई हुई अरे अरे वो रामू हो जा पुटे हेरा चना तू सचमुच गोरी छोखनी आए
3: अरे हाने इन में मां छा के मेम साहब चयो ए मां गोरी खणी आयस
1: मेम साहब चयो ए मां गोरी खणी आयस सवाए दो के मेम साहब चे त जहर खणी अच छछा तू जहर खणी दे
5: ये सब छा नाटक लगाए रखियो अथव
4: नाटक नाटक ये यस यस यस यस यस डॉक्टर असी त नाटक जी रिहर्सल करे रहया वासी पर जल्दी जल्दी में ने निर्मला ता के सचमुच ही फोन करे छदी
5: छा मतलब
4: हां डॉक्टर्स ही वठो सुभान जे नाटक जी पास तो फैमिली समेत अच जो हां
1: हाँ, डॉक्टर बिल्कुल सुभान तमा फैमिली समेत अच हाँ,
5: फैमिली समेत ये तमा पास देण जो डाडो सुठो तरीको गोल्यो आहे इयो त सुठो थयो जो मां डॉक्टर वांदी पेंजी वांदी डिस्पेंसरी ते वांदी बैठी वस खैर हन पास के ही फीस समझी चुपचाप थी वना वडाया नाटक करण वाला रिहर्सल ता कन तकर तकर में सचमुच फोन ता कन डॉक्टर के वो भी डॉक्टर वांदी के वडाया नाटक करण वाला फोन ता कन तकड़ तकड़ में
1: अरे बुदो तो सही अरे डॉक्टर साहब पर सही हाल तो बुदो अरे बुदो तो सही डॉक्टर साहब
5: वना जी मां डॉक्टर वांदी तहां वांगण वांदी ना आया
4: सत्यानाश इसो नाटक करण वारन जी इज्जत मुफ्त में चार गालियों बुधियों सी पासो भी रिन्यू सी हिन खा पो बेइज्जती पर निर्मला तो कमाल कयो यार हां सचमुची
2: ठीक है एक दफो चयो तो सही गलती थी वही
1: अरे खैर चल चंगो काई गाल कोने हां जको थयो सो थयो पर रमेश एक गाल आए निमो रोल तो निभाए वेंदी हां निमो सुभाणे नाटक में वाह वाही रुगो तुजी थींदई चंगो रमेश हाले मां हला थो अरे घणे कम पया ने यार बाकी रिहर्सल शाम जो मंच ते अची कर कंदासी
4: ठीक ठीक ओके
1: ओके
5: ओके बाय बाय
0: रामू ओ रामू
3: आयो साईं
0: अरे किथे आई जल्दी अच
3: हां हां साईं अच्छा तो ओरे मालिक अची रहे हैं साईं साईं घंटी थी वजे फोन खणो
0: हेलो हां हां हां मां सोबराज मलिक गलाए रहे हूं या केर अरे भाई टोपणदास है हां भाई केड़ी खबर चार आए बे सब ठीक ठाक है ना हां हां कहजे ले निर्मला ले हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ छो न डाडो सुठो हाँ अचो न अचो अचो हाँ छा नालो तन कीमत राय हाँ हाँ अच्छा वो कपड़े जा व्यापारी हैं अच्छा अच्छा ठीक है सुभाने रात जो 9 बजे बिल्कुल ठीक जरूर अचो जरूर जरूर रामू, अरे ओ रामू।
3: हाँ हाँ जी साईं, जी साईं।
0: बुध बुध ही वट ही 2000 रुपया रख पाना वट आए शाम जो जेको आए सुठी माए वाली फर्स्ट क्लास मिठाई वठी अजे।
3: हाँ साईं।
0: आए मिठाई सा गडो कज थोड़ो ड्राई फ्रूट काजू किशमिश बादाम वगैरह वठी अजे।
3: जी साईं।
0: आए बुध जेको आए यो कोल्ड ड्रिंक भी वठंदो अच जे।
3: ठीक है साईं।
0: ठीक है ना
3: साईं, कोई मेहमान अची रहे हैं छा?
0: हाँ हाँ वो पांजी निर्मला के दिसण छोकरे वारा अची रहे हैं सुभाने रात जो।
3: सुभाने रात जो नाटक जो तो थियो सत्यानाश।
0: तो खेरो को थोड़ो कम चाहो तो बड़बड़ पे तो करी छापे तो बड़बड़।
3: ना ना साईं कुछ ना साईं, मिठाई मिठाई काजू किशमिश मां सुभाने रात जो वठी ना साईं। ठीक है सरकार, बिल्कुल।
0: कमाल है यार, अजीब मानू है, रोगो बक बक लगी वही दस। रामू, अरे ओ रामू।
3: जी साईं।
0: सब तैयारी थी चुकी है ना पांजी?
3: हां साईं, तां बिल्कुल भी चिंता ना कयो, सब तैयारी करे रखी है मु।
0: अरे यार पर 8:30 थी चुका है ने, नेमू आए रमेश अन्या आया ही कोने?
3: बस साईं अचण वाला हुंदा।
0: ओफो भई एक का वधी का एक है। अरे घर में मेहमान नवाजी जरूरी ना है, नाटक दिसण जरूरी है। अरे घट में घट उन नेमू के तो रुकण खपे ना, पर न मां तो नाटक दिसण वेंदस, डाडो सठो नाटक है।
3: साईं बार है न, बस इंदा ही हुंदा।
6: चेर सोबराज मल, अरे भाई सोबराज मल।
0: अरे लगे तो मेहमान अच्छी वेन, पर ये निमू है रमेश अजा तई पैदा ही कोन थे। रामू तू संभाल जाए। अच्छो अच्छो अच्छो साईं।
6: जय झूलेलाल साईं,
0: जय झूलेलाल साईं,
6: जय झूलेलाल।
0: अच्छो अच्छो अंदर अच्छो ना।
6: हां
0: वियो साईं वियो, तमा वियो।
6: हाँ तवा के छा बुझाया सोबराज मल, शहर में अजकल नाटक जी एड़ी बाह लगी पई आ जो पुछो ही ना। अजकल आ छोरा पी माओ जे चवण का तो बाहर ही लगा पिया, बस रुगो नाटक, पढ़ाई लिखाई में तो उनन जो ध्यान ही कोने। दिसो ना अजकल जा माँ पी अलाए किए पेंजी जवान धीरन के नाटक में कम करन ला मोकले रहा है, को भी शर्म लिहाज तो रहो ही काने।
0: तवा सही चई रहा हो साईं टोपण दास।
6: अरे मां भी अजीब मानू आया, पहरियो ता इनन ता गज्जो ही आन हने शहर जा मशहूर कपड़े जा व्यापारी सेठ कीमत रहा है।
3: साईं जय झूलेलाल।
0: जय झूलेलाल साईं।
6: ए तवा सेठ सोबराज मल।
0: राम राम साईं। जय झूलेलाल।
3: जय झूलेलाल साईं। देर सा अचण जी मां माफी तो चाहया, दरअसल आज नाटक दिसण जो मूड ठई पियो।
0: नाटक इन जो मतलब तवा भी नाटक में दिलचस्पी रखंदा आयो?
3: ना ना ना ना एड़ी गाल ना आए।
1: हां साईं गालियो तो भाई थींदियो, वठो मिठाई है शरबत खणो।
0: खणो साईं खणो, मिठाई खणो, टोपड़ना से तहां खणो मिठाई।
6: गाल या है सोबराज मल, त नाटकन में दिलचस्पी सेठ कीमत राय जी न, पर हनन जे स्किल दे पुट जी आए। अज जे नाटक में हु भी हिस्सो वठी रहयो हो इने करे।
0: अच्छा अच्छा, दरअसल अज जी पीढ़ी जो झुकाव जरा नाटकन जी तरफ वधिक थी रहयो है। मुंजो पुट रमेश ए निमू भी नाटक दिसणी वेन, बस अचण ही वारा हुंदा। खैर यो तो बुधायो साईं टोपणदास, छोकरो कंदो छा है?
3: साईं यो टोपणदास का न पूछो, यो छोकरे जे पी का पूछो, यानी मुखा सेठ कीमत राय का। मुजो छोकरो अन्या कॉलेज में पढ़े पियो, पढ़ाई करे पो अची पंजो ये कपड़े जो व्यापार संभालिंदो। ताजी दिए
0: ओवा बन्या पढ़ी रही है साईं।
6: सेठ साहब छोकरो एकदम हीरो तो हीरो।
3: सो तो सब ठीक है टोपणदास, छोकरी पो प्या दिसंदासी, पर तानन का यो तो पूछो त देती लेती घणी दींदा
6: जो साईं। हां त सोबराज मल, रिश्तो त तवा एक ते एक सा पक्क ही समझो।
0: पक्क? पर छोकरे छोकरी जी रजामंदी त दिसणी पौंदी टोपणदास, ही असा जो जमानो तो आए कोने कि मां पी शादी पक्की कई आ असा चुपचाप वनी शादी करे वरती। अरे हाणे जमानो बिल्कुल बदली रहयो आए।
6: यो त सब ठीक आ सेठ साहब, पर छोकरो ए छोकरी दिसण का पहरू देती लेती ई गाल त थी वणन गुरजे।
0: देती लेती?
6: हां साईं, आजकल इनिए जोई त पुटिया दुनिया हली रही आ।
0: बार बची वेन, अचो अचो।
3: अरे रमेश।
7: यस अंकल, तवा असांजे घर। जय झूलेलाल साईं।
3: जय झूलेलाल।
0: तवा मुंजे पुट रमेश के?
7: अरे डैडी, ही त अशोक जा पापा हैं।
0: अशोक?
7: हां।
6: अरे वट टट इहा बि सुठी ॻाल्हि थी आई।
3: त हीअ तव्हांजी नियाणी आहे?
0: जी साईं, इहा ई आहे मुंहिंजी धीअ निमू।
3: वाह निमू वाह,
8: अज के नाटक में तो तुझे रोल ढो ही सुठो रो खास करे हुए मेनकाज वाली डांस
0: मेनकाजी डांस अरे सेठ साहब तवा के का गलत फहमी थी आई।

0: के कहड़ो हीरोइन ठहणो आहे तव्हां त अजा नाराज़ थी रहिया आहियो
1: तव्हां अञा समझी कोन रहिया आहियो टोपणदास ॾिठव कोन ॾेती नेतीअ नाले सां ई हिननि कीअं मुंहुं बिगाड़े छॾियो
0: तव्हां चिंता न कयो सेठ साहिब मां मञाईंदुसि तव्हां हेॾां सेठ सोभराजमल हेॾां अचो हेॾां अचो सेठ साहिबु हेॾां अचो तव्हां अजायो ॻाल्हि खे वधाए रहिया आहियो हाणे त तव्हांखे छोकिरे जे बारे में बि ख़बर पइजी वई आहे तव्हां त रुगो ॾेती लेतीअ जी ॻाल्हि कयो बसि सभु बाक़ी मूं ते छॾियो
2: ॾेती लेती तोखे त ख़बर आहे टोपणदास मां हिन ॾेती लेतीअ जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहियां अरे अॼु न त सुभाणे असां सभिनी खे मिली करे हिन ॾेती लेतीअ खे समाज मां ख़तमु करणो ई आहे
0: तव्हां बि कहिड़ी ॻाल्हि करे रहिया आहियो सेठ साहिबु अॼुकल्ह शादीअ में रौनक रुगो ॾाजे सां ई थींदी आहे बिरादरीअ में समाज में इज़त आहे त रुगो हिन ई शइ जी
2: ॾिसो टोपणदास मां तव्हांखे हिकु दफ़ो चई चुको आहियां मां हिन ॾेती लेतीअ जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहियां सख़्तु ख़िलाफ़ु
1: ठीकु आहे छॾियो टोपणदास जीअं हिननि जी मर्ज़ी हाणे असांखे इजाज़त ॾियो साईं मूंखे ज़रा सी बि ख़बर न हुई त तव्हां घर घुराए करे असांजी हीअं बेइज़ती कंदा आख़िर तव्हां सम्झो छा आहे अरे मुंहिंजे पुटु अशोक लाइ छोकिरियूं खुटियूं कोन्हनि हिन शहर में तव्हां जहिड़ा मुंहिंजे अशोक लाइ मुंहिंजे घर चकर लॻाईंदा आहिनि चकर
2: मां तव्हांजे दर ते कीन आयोसि सेठ क़ीमत राय तव्हांजे छोकिरे लाइ छोकिरियूं घणेई आहिनि त मुंहिंजी धीउ निमूअ लाइ बि छोकिरा को खुटा कोन आहिनि तव्हां वञी सघो था हितां
1: चङो हलो टोपणदास अरे अशोक तूं हिते तूं हिते छा पियो करीं
3: वाह वाह पापा वाह पापा मां त हिते रमेश सां मिलण आयो हुअसि पर हिते तव्हांखे ॾिसी ॾाढो हैरान थी वियो आहियां पापा तव्हां हिते ॾेती लेतीअ ऐं ॾाजे जे चकर में फासी रहिया आहियो
1: चङो चङो तूं तुम सां गॾु हल
3: बिल्कुलु पापा मूंखे त तव्हां सां गॾु ई हलणु घुरिजे पर हलण खां अॻु मां तव्हां सां कुझु पुछण थो चाहियां पापा छा तव्हां हिते मुंहिंजी शादी तय करणु आया हुआ हीअ ॾाजे जी ॻाल्हि मुंहिंजे बारे में हली रही हुई पापा पर पापा मूंखे ॾाढो ॾुख आहे त रुगो हिकु ई ॻाल्हि जो कि तव्हां मुंहिंजे दिलि खां कॾहिं की न पुछो हो कि मां छा थो चाहियां मुंहिंजी दिली इच्छा छा आहे हिन ॾेती लेतीअ हिन दान दहेज खां मूंखे बि सख़्तु नफ़रत आहे पापा पाण तव्हां पंहिंजे दिलि खां पुछो त तव्हां ही जेको करे रहिया आहियो छा इहो ठीकु आहे ही कपिड़े जो वापार त तव्हां अॼु चइनि पंजनि सालनि खां करे रहिया आहियो ऐं तंहिंखां पहिरीं जी ॻाल्हि शायदि तव्हांखे यादि न आहे पापा जॾहिं मंजूअ जी शादीअ जी तारीख़ नज़दीक हुई ऐं मंजूअ जे सावरनि नाणे जी घुर कई हुई त तव्हां शायदि पापा हिन रमेश खे विसारे वेठा आहियो हिन जे अहसाननि खे विसारे वेठा आहियो इहो उहो ई रमेश आहे पापा जंहिं तव्हांजी इज़त बचाइण जे करे पंजनि ॾींहनि जे अंदरि भॼ ढुक करे महिनत करे नाटक कयो हो ऐं तव्हांखे हुन नाटक जा 50,000 रुपया ॾिना हुआ छो छाजे करे हू भॻो तव्हांजी इज़त जे करे अरे मंजूअ जे करे ऐं अॼु तव्हां पापा
1: बसि कर पुटु बसि कर मूंखे सभु यादि आहे सभु यादि आहे मूंखे माफ़ कजो सोभराजमल माफ़ कजो मां पैसो कमाए ऐं पैसे जो ई लालची थी वियसि मूंखे भला कहिड़ी कबी आहे भॻवान जो ॾिनल मूंखे सभु कीअं आहे सभु कीअं आहे मूंखे माफ़ कयो सोभराजमल माफ़ कयो
3: पापा पापा
0: भाई सेठ साहिब शुभ मुहूर्त निकिरी रहियो आहे छोकिरे छोकिरीअ खे आशीर्वाद ॾींदव की न न
1: हा हा छो न सदाई ख़ुशि रहो पर अशोक हाणे जॾहिं बि तूं नाटक करी त मूंखे रोल ज़रूरु ॾिजांइ
3: पापा
1: हा अरे बचपन में मूं स्टेज ते घणेई नाटक कया आहिनि पर पोइ हिन 99 जे चक्र में अची सभु विसारे वेठसि अरे असली मनोरंजन त इहो ई आहे ऐं सची शिक्षा बि जेका असांखे हिन नाटकनि जे ज़रिए मिली सघे थी ऐं असांजी पंहिंजी सिंधी संस्कृति ऐं ॿोलीअ खे बचाइण में मदद करे सघे थी
3: हा पापा
4: अरे वाह मूं मिठो कयो

साथियो, तवां पुधी रहियो आहे सुरेश संधू जो लिखियलु नाटक दिल लॻी। हिन में हिसो वठंदड़ कलाकार किरदार समेत ई आहिनि। योगराज जो किरदार निभायो श्री राजेश बम्बाणी, मंगाराम हुआ वासुदेव मोटवानी, निर्मला जे किरदार में हुई कविता सचदेवा, डॉक्टर जे किरदार में हुई पूजा चांदवानी, अशोक जो किरदार दिलीप रामचंदानी निभायो, रमेश जे किरदार में हुआ मनोज आडवाणी, टोपरदार से किरदार में हुआ श्री रमेश रंगाणी, कीमत राय जे किरदार में हुआ देवसागर, नौकर रामू जो किरदार निभायो श्री हेमंत खटवाणी। साथियों, हिन सां गॾु ई अॼु जे प्रोग्राम जो टाइम हिते ई पूरो थो थिए। वरी गॾिजंदासीं, तेसीं ताईं वीना खे इजाज़त ॾींदा। नमस्कार।

0: आपने सुना सिंधी कार्यक्रम, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म व अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
0: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कैफी आजमी साहब के लिखे गाने से कर रहे हैं। गाने के लिए संगीत तो खय्याम ने दिया है। लता मंगेशकर ने इस गाने को आखिरी खत फिल्म के लिए गाया है।

लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना आखिरी खत फिल्म का गाना। कार्यक्रम के अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ किशोर कुमार ने दिया है। गीत को हमने दीदारे यार फिल्म से लिया है। ये एक पारंपरिक रचना है जिसके लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लता मंगेशकर के स्वर में अब आपको सुनवा रहे हैं नक्श लायलपुरी की गीत रचना। इसके लिए संगीत मदन मोहन ने दिया है और यह गीत हमने दिल की राहें फिल्म से लिया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए गबन फिल्म का गीत, गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। षडेंद्र के लिखे इस गाने के लिए धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए गबन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र से अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं विनियोग संख्या 3 विधेयक का उद्देश्य 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए खर्च की पूर्ति के लिए देश की संचित निधि से धनराशि के विनियोजन को अधिकृत करना है। इस बीच राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। हालांकि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीयों तक राखियां समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डाक विभाग ने किफायती और वाटरप्रूफ लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन लिफाफों के माध्यम से खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देशों में राखियां भेजी जा सकती हैं। भीलवाड़ा डाक मंडल से अब तक 100 से अधिक राखियां विदेश भेजी जा चुकी हैं। डाक अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि इस बार सबसे अधिक राखियां ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल पर भविष्य की उड़ान के तहत ये आयोजन रखा गया है। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम चयनित सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों से विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार दौसा जिले के मंडावर में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा 12 के अंता में 10, हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 9.6 और डीडवाना कुचामन के मकराना में 9 सेंटीमीटर पानी बरसा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पाली में कैच द रेन अभियान के तहत नगर निगम ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। अभियान के माध्यम से लोगों को बारिश का पानी अधिक से अधिक इकट्ठा करने और जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है। नागरिकों से घरों, संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अपनाने की भी अपील की गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला कल आयोजित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने में सहायता करना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म फिल्म का गाना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा। गाने के लिए संगीत मदन मोहन का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में जो गीत अब आप सुनेंगे उसको हमने हसीना मान जाएगी फिल्म से लिया है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। अख्तर रोमानी के बोलों को सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लता मंगेशकर का गाया हुआ जेलर फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत के लिए धुन मदन मोहन ने बनाई है।

ली जब सुने काली टोपी लाल रुमाल, फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, गाने के लिए संगीत चित्रगुप्त का है।

अब आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन की बनाई धुन पर। खुशबू फिल्म के इस गीत को किशोर कुमार ने गाया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए खामोशी फिल्म का गीत। गाने को लता मंगेशकर ने गाया है। गुलजार के लिखे इस गाने के लिए संगीत हेमंत कुमार का है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ और फिल्मी गाने। कार्यक्रम की शुरुआत लैला मजनू फिल्म के गाने से कर रहे हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। साहिर ने इस गाने को लिखा। गाने के लिए संगीत मदन मोहन और जयदेव का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। युगल आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ अब आपको नई उम्र की नई फसल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गुलजार के गीत रचना संगीत सलील चौधरी का है। मेरे अपने फिल्म के इस गीत को किशोर कुमार ने गाया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए नौनिहाल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। कैफी आज़मी साहब ने इस गाने को लिखा है, गाने के लिए संगीत मदन मोहन का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
5: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
6: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
7: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
9: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम्पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अलाउद्दीन लंगा और साथी।
11: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
12: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
13: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अलाउद्दीन लंगा और साथी।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमेर चैनल से आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अलाउद्दीन लंगा और साथी।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थे अलाउद्दीन लंगा और साथी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए नया दौर फिल्म के गाने से कर रहे हैं। गाने को साहिर ने लिखा है। इस गीत के लिए संगीत ओपी नैयर का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लता मंगेशकर का गाया हुआ पड़ोसन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं। इस गाने के लिए धुन आर डी बर्मन ने बनाई है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में जो गीत अब आप सुनेंगे उससे हमने पत्थर के सनम फिल्म से लिया है। गीत को मुकेश ने गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। रतन फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। गीत के बोल डीएन मधोक के हैं। इस गाने के लिए संगीत नौशाद ने दिया है। आवाजें हैं जोहराबाई अम्बाले वाली और साथियों की।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रफू चक्कर फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की। गुलशन बाबरा के लिखे इस गाने के लिए धुन कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

शैलेंद्र सिंह और कंचन के गाए रफू चक्कर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों

0: मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया। क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओ, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
0: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है, तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी,
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी,
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी,
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी,
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
0: जी
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
0: जी
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी,
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी,
0: AI हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी,
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी

0: चाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
5: नमस्कार सर।
6: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा आजा आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
7: सर मैं इशिता।
8: मैं हूँ चेताली।
9: मैं शुभेंदु।
10: और मेरा नाम है इंदु।
11: और मैं सोमेश।
6: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
7: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
6: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
9: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
11: सर फिर क्या होता है?
6: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
9: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
6: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे
12: उठो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
7: वाह, कितनी सुंदर बात है।
6: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
13: पौधा।
6: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
13: उल्टा?
6: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
9: फिर क्या हुआ?
6: फिर 2-3 दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाईं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
9: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए,
13: क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
6: हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
7: जी सर।
6: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
7: रसपान कैसे करते?
6: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
7: जी सर।
6: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
7: अच्छा, अब समझ आया।
6: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
7: जी सर। यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
14: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
10: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
15: देखो, इतना बड़ा पेड़।
16: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
17: अरे, यहाँ तो कितने सारे पेड़ पौधे हैं।
7: और ये मशीन क्या है? चलो चलो, सर से पूछते हैं।
6: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
15: माइक्रोस्कोप?
6: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
14: जी सर।
6: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
15: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
6: शाबाश।
15: हाँ, नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
7: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
6: हाँ, आओ आओ।
10: मुझे भी देखना है।
6: देखो क्या दिखाई दिया।
10: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल सही। लाखों पाइप हैं।
7: पाइप?
6: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
7: अच्छा, तो ये बात है।
6: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
15: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
6: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
7: नहीं सर।
6: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्रु, तुम देखो, क्या दिखाई दिया।
15: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
7: जी सर।
6: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता, तुम बताओ।
7: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
6: शाबाश। और शुभेंदु, तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
15: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
6: हाँ।
15: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
6: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
7: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
6: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
10: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
18: हम भी नहीं होते।
6: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
18: बहुत अच्छी।
6: अब से एक काम जरूर करना।
18: क्या सर?
6: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
18: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
6: शाबाश।
2: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
0: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी जयपुर उजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप NewsOnAIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए उर्दू प्रोग्राम कुछ तो है तुझसे राबता।
4: पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, कुछ तो है तुझसे राबता।

बात करते हैं आगे बढ़ने की, बात करते हैं आगे बढ़ने की। छोड़ो किसने किसे गिराया था, आपको किस लिए सफाई दें, आपको किस लिए सफाई दें। हम बुरे हैं तो फिर बुरे अच्छे। आप सभी का इस्तकबाल है, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर शाइस्ता महजबीन। कुछ तो है तुझसे राब्ता प्रोग्राम, आपका ख़ास प्रोग्राम जिसमें क्या क्या है ख़ास बता देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे कलाम शायर में मोहम्मद अयूब खान बिस्मिल साहब। मोहम्मद अयूब खान और शायरी में अयूब बिस्मिल के नाम से जाने जाते हैं, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन शायर, साथ ही साथ गज़लें, नगमों का नजराना भी साथ साथ चलेगा, उर्दू अल्फाज की चाशनी और बशीर बद्र की मीठी मीठी शायरी, तो है ना अच्छा सा सेगमेंट हमारा। तो देखिए, अल्फाज की चाशनी से आगाज़ करते हैं हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का। उर्दू अल्फाज, सबसे पहले मोतबर यानी इज़्ज़तदार, काबिल एतमाद। कहते ना कि मोतबर शख्स हैं वो, यानि इज़्ज़तदार हैं, काबिल एतमाद हैं। तलखियात यानि कड़वाहटें, कई बार रिश्तियों में तलखियात आ जाती हैं, है ना, तो कहते हैं कड़वाहटें। पोशीदगी यानि छिपाव, छिपना यानी पर्दे के पीछे किसी भी ना किसी तरह का छिपना यानी पोशीदगी। ये शेर है कि मेरा कि मेरी पोशीदगी पे हैरत क्यों, मेरी पोशीदगी पे हैरत क्यों, अब तो तू भी नहीं है मंजर में। और लफ्ज़ है हिजर यानी जुदाई, लफ्ज़ है सुबह सहर यानी सुबह। तो ये कुछ अल्फाज हैं उर्दू के, और हम बात करेंगे बशीर बद्र साहब की, उनकी शायरी की, उनकी ज़िंदगी की। लेकिन उससे पहले क्यों ना, एक सावन का मौसम चल रहा है, बारिश, कल भी देखिए कितनी खूबसूरत मौसम था और आज भी इतना बेहतरीन मौसम है घूमने का, है ना, और एक दिल को सुकून देने वाला ये मौसम चल रहा है बारिश का। लगता है कि बारिश को बैठ कर देखा जाए, इसको दिल के अंदर सिमो लिया जाए। सावन का मौसम ही ऐसा होता है, इतना खूबसूरत, और दिल को सच में आप खुद महसूस करेंगे जब आप बैठते हैं चाय लेकर या कहीं पर भी ऐसे सुकून के पल बिताते हैं, वहाँ पर हरियाली है और बारिश का मौसम है, तो दिल को अलग ही कैफियत होती है। और सच यकीन जाने आपकी सेहत के ऊपर भी मुस्बत पॉजिटिव असरात इसके होते हैं जब आप इस तरह से बैठते हैं और सोचते हैं, है ना। तो चलिए, ऐसा ही खूबसूरत सा नगमा आपके लिए और अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ में सुनिएगा, सावन आया है। तो मोहब्बत बरसाने को रहिए तैयार।

जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, यही आवाज़ जगजीत सिंह की हमसे यही कहती है। बहुत ही खूबसूरत मौसीकी का नज़राना आपके सामने अभी हमने पेश किया था सामीन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। ये थे बशीर बद्र साहब। बशीर बद्र साहब अपनी शायरी के ज़रिए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करते हैं। वो बताते हैं कि ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे लोग आपसे मिलते हैं। आप देखिए कि बहुत उर्दू शायरी की दुनिया में बहुत कम नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शायर नहीं रहते बल्कि एक दिलों की आवाज़ बन जाते हैं। बशीर बद्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत सादा लफ्ज़ों में बहुत गहरी बात कह देते हैं। उनके अशआर पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है जैसे कोई अपना शख्स आहिस्ता से दिल की बात कह रहा हो। इसलिए उनकी शायरी हर उम्र के लोगों तक पहुंचती है। उनके यहाँ मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं है बल्कि एक तहजीब है, एक रवैया है। वो रिश्तों में एहतराम, फासले में शाइस्तगी और दुख में वक्कार सिखाते हैं। यही वजह है सामीन कि उनके कई अशआर जबाजत है और लोगों को में इतने आम हो चुके हैं। लोग बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए ये मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। और बड़े लोगों से जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मैं मील का पत्थर नहीं देखा, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये देखिएगा कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे, और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो ये हैं बशीर बद्र साहब। चलिए सुनते हैं मौसीकी का एक नजराना और फिर मुलाकात करते हैं।

0: कागज़ की कश्ती भी सावन में ही याद आती है। सावन के बगैर तो कागज़ की कश्ती और इसका वजूद ही नहीं रह जाता, क्योंकि सावन में जब पानी होता है तो हम बच्चों बच्चों के लिए ये बचपन की यादें होती हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ घर और मोबाइल तक महदूद रह गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि मिट्टी क्या होती है, बारिश क्या होती है, कश्ती क्या होती है। इन चीज़ों से आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जो भी वालदेन सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से रूबरू करवाएं जो आपने बचपन में किया है। तो चलिए आज के जो प्रोग्राम का अब हम बता देते हैं क्या क्या हमने इसमें ख़ास आपको सुनाया है। देखिए, मोहम्मद अय्यूब खान साहब का हमने कलाम सुना, अरिजीत सिंह के और भी मौसीकी के नजराने हमने सुने, बात करी बशीर बद्र की शायरी, उर्दू अल्फाज की चाशनी। तो दीजिए आपके मेज़बान को इजाज़त, खुदा हाफिज़। और इस प्रोग्राम की रूह रवा थे राजेंद्र सिंह तारा साहब।
1: पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, कुछ तो है तुझसे राबता,
2: कुछ

आपने सुना उर्दू प्रोग्राम कुछ तो है तुझसे राबता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के गाए आखिरी अदालत फिल्म के गाने से कर रहे हैं। अनजान ने इस गाने को लिखा, संगीत अनु मलिक का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको साहिबा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

फिल्म संगीत की इसका कम लीजिए, आप सुनिए माचिस फिल्म का गाना। गाने को लिखा है गुलजार ने, इस गीत के लिए संगीत विशाल का है, आवाज़ें हैं हरिहरन, के सुरेश वाडकर और विनोद सहगल की।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको नमक हलाल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की। गीत के बोल अनजान ने लिखे हैं। इस गाने के लिए संगीत बप्पी लहरी ने दिया है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए उदित नारायण का गाया हुआ पापा कहते हैं फिल्म का गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब आप सुन पाएंगे हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। बज गए हैं शाम के 5, तो चलिए करते हैं युवाणी कार्यक्रम का आगाज। आप सुन रहे 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का युवाणी कार्यक्रम। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अवनी नागर। तो सबसे पहले एक बात बताती हूं कि आजकल जयपुर का मौसम ना दिल जीत रहा है। कभी हल्की बारिश, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी बादल को चुपके चुपके से आ जाना और चले जाना। ऐसा लगता है जैसे मौसम भी हमें थोड़ा रुक कर जिंदगी को महसूस करना सिखा रहा हो। बारिश की बूंदें जब जमीन को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं, दिल की महक भी उठती है। और एक छोटी सी बात और कि कुछ मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलते, कुछ मौसम इंसान के अंदर भी नई उम्मीदें छोड़ जाते हैं।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
1: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
0: तो साथियों, अभी जयपुर का मौसम ना बहुत प्यारा हो रहा है, तो अगर आप इस वक्त सफ़र में हैं, ऑफिस में हैं, घर पर हैं या चाय की प्याली के साथ इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं, तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए युवाणी कार्यक्रम के साथ। बारिश तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन आपने कभी सोचा है जितना पानी आसमान से हमारे पास आता है उसमें से हम कितना बचा पाते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और साथ में हमारा दूसरा टॉपिक है प्लांटेशन का। ये दो ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो अगर हर इंसान अपनी तरफ से उठा ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाम थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान होता है। जो बारिश का पानी हमारी छतों, बालकनियों पे या फिर आंगन में गिरता है, उसे यूं ही बदलने की बजाय, उसे यूं ही बहने देने की बजाय हम इसे इकट्ठा करें या जमीन के अंदर तक पहुंचाने को ही हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अगर हम इसके अंदर ही थोड़ी सी और बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि यदि अगर हम पानी को ऐसे ही बहने देते हैं, जाने देते हैं और कभी भी उसे बचा कर नहीं रखते हैं, तो शायद हमारे लिए ही वो एक तरीके से हम बहुत अच्छे रिसोर्स को खो बैठते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पानी की कमी सिर्फ उन जगहों पर होती है जहां बारिश कम होती है, लेकिन सच यह है कि जिन शहरों में अच्छी बारिश होती है वहां भी कुछ महीनों बाद पानी की कमी महसूस होने लग जाती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश का ज़्यादातर पानी सड़कों पर या नालों से होकर सीधा निकल जाता है। अगर हम उस पानी को ज़मीन के अंदर वापस भेज दें तो आने वाले समय में हमारे कुएं, हैंडपम्प, बोरवेल में से पानी का स्तर बरकरार रह सकता है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ बड़े बड़े घरों या ऑफिस के लिए नहीं होते, आजकल छोटे घरों और स्कूलों के लिए भी इसे आसान एक तरीके से, एक सिस्टम के जरिए इसे लगाकर इसे बचाया जा रहा है। जो बारिश का पानी आ रहा है उसे जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करी जा रही है। अगर आपके घर की छत 100 वर्ग मीटर की है तो एक अच्छे बारिश में 1000 लीटर पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं। सोचिए, जो पानी यूं ही बह जाता है वह पानी भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सुंदर सा गीत सुनते हैं जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, लिरिक्स दिए हैं मजरू ने और कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाने का नाम नहीं बताऊंगी, गाना आप सुनिए और इंजॉय करिए।

तो आपने सुना है बेहतरीन गाना एक लड़की भीगी भागी सी। तो जब हम बात कर रहे हैं बारिश की, पानी की, बरसात की, तो ये गाना होना तो बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, जब हम बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो इससे होता क्या है, हम थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी की बर्बादी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आने वाले समय में पानी की कमी से बचा जा सकता है, और शहरों में वाटर लॉगिंग भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और कुछ हद तक कम भी हो जाती है। अगर आपके घर में बड़ा सिस्टम लगाना संभव नहीं है, तो आप छोटे छोटे तरीके से भी उसे कवर अप कर सकते हैं, जैसे कि छत के पाइप को एक स्टोरेज टैंक से जोड़ देना या फिर किसी रिचार्ज पिट तक ले जाना। अगर घर में जगह कम है तो भी सोसाइटी या अपार्टमेंट लेवल पर एक ऐसे सिस्टम को लगाया जा सकता है। बारिश का पानी मुफ्त मिलता है हमें, बस उसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जो मुफ्त की चीज़ें होती है, हम वैसे तो उसे बहुत कम वैल्यू करते हैं, बहुत कम संभालते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मुफ्त की चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जो मुफ्त की चीज़ें, उसे वेस्ट ना जाने दे, उसे संभालना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। और कहते हैं कि पानी बचाना सिर्फ आदत नहीं, आने वाले कल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ पानी होगा वहाँ हरियाली भी होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक यानी कि प्लांटेशन के बारे में। तो बारिश का मौसम है पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है, पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत कम पड़ती है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ पौधा लगा देना ही काफ़ी है? नहीं, पौधे को एक बहुत छोटी सी तरीके से लेकर जितना बड़ा विशाल वो पेड़ बन सकता है, हमें उसकी तब तक सेवा करनी होती है। एक जैसे हम छोटे से बच्चे को पालते हैं, उसी तरह हमें एक पौधे को भी पालना चाहिए। और जितने इमोशंस हमारे एक ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़े होते हैं, उतने ही हमारे एक पौधे के साथ भी जुड़े होते हैं। तो उसे देखभाल करना, उसे समय समय पर पानी देना, उसे सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जितना प्लांटेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अभी इतना पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, इतनी सारी जगहों पर इंडस्ट्री एरियाज़ बन रहे हैं जहाँ पर हमारे पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उतनी ही चीज़ें बढ़ रही है। उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो चलिए, हम प्लांटेशन के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
5: तो साथियों, समय हो चला है रोजगार सूचना की तरफ। तो आज की हमारी पहली रोजगार सूचना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भर्ती की तरफ से, जिन्होंने जूनियर इंजीनियर सहित कई सारे पदों पर भर्ती निकाली है। पदों की संख्या है 4098। आवेदन शुरू होने वाले हैं 14 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट रहने वाली है 13 सितंबर 2026। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री या बैचलर्स डिग्री अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 33 साल होनी चाहिए। सैलरी आपको बाद में बताई जाएगी। अगर हम बात करें कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप www.rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, www.rrbapply.gov.in। इसी के साथ दूसरी रोजगार सूचना है संघ लोक सेवा आयोग भर्ती की तरफ से, जिन्होंने प्रिंसिपल सहित 828 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं 25 जुलाई 2026 से, लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 रहने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स डिग्री BA के पद के अनुसार 2 से 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। एज लिमिट अधिकतम 50 साल है। सैलरी आपको बाद में बताई जाएगी और अप्लाई करने के लिए upsconline.nic.in पर अप्लाई करना होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, upsconline.gov.in पर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्लांटेशन की, पेड़ लगाने की। तो जब बात होती है पेड़ की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ ना हो तो बारिश का मज़ा शायद अधूरा रह जाएगा। पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देते, ये हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि धरती का सबसे पुराना दोस्त कौन है, तो शायद जवाब पेड़ ही होगा। जब न सड़कें थी, न बड़ी बड़ी इमारतें थी, तब भी पेड़ उनके साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और अगर हमने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देनी है, तो कल भी इन्हें होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी अभियान में पौधे लगाए जाते हैं, फोटो खींची जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, असली प्लांटेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो बात तब पूरी होती है जब पौधे की पूरी तरीके से देखभाल करी जाए, एक छोटे से पौधे से उसे एक विशाल पेड़ होने तक उसे संभाला जाए। तो कुछ सालों में सैकड़ों लोग शायद पेड़ की छाँव में रह सकेंगे। हम अक्सर पेड़ को सिर्फ एक पेड़ समझते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, एक पेड़ पर कितनी चिड़ियाएँ अपना घर बनाती है, गिलहरियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, न जाने कितने छोटे छोटे जीव उस पर निर्भर रहते हैं। यानी जब हम एक पेड़ लगाते हैं, तो सिर्फ एक पौधा नहीं लगाते हैं, हम एक पूरा छोटा संसार बसाते हैं। इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो साथियों, अभी आपने गीत सुना भागे रे मन चमेली मूवी से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, लिरिक्स दिए हैं इरशाद कामिल ने और कंपोज किया है संदेश सांधल्य ने। तो दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट, बड़ी संस्थानों या एनजीओस की होती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा बदलाव हमेशा युवा ही लेकर आता है। आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं बनाता, बल्कि अगर वो चाहे तो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकता है। तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या प्लांटेशन हो, ऐसे क्षेत्र में जहाँ युवा की भागीदारी हो तो एक वो बहुत बड़ा अंतर लेकर आ सकती है। अगर युवा अवेयरनेस फैलाए, अगर युवा अपनी चीजों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, प्लांटेशन को, या ऐसे बड़े बड़े जो जितनी चीजें होती हैं उन पर कदम उठाए, उन पर चीजों को करना शुरू करें, तो शायद कई हद तक हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझते हैं, तो ये युवा की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने परिवार को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, कॉलेज में इस विषय पर बातचीत करें, उन्हें समझाएं, कोशिश करें कि हम किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लासेस होती है जिसके अंदर इस चीज को बताया जा सकता है। युवा स्थानीय सफाई अभियानों में भी भाग ले सकते हैं। बरसात से पहले जितने जलाधारियां होते हैं, नालियां होती है, निकास मार्गों पर आपस के क्षेत्रों में सफाई में योगदान देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आया है तो उसकी शुरुआत युवाओं से होती है। तो आज पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी ज़रूरत भी बदलाव मांग रही है। अगर आज का युवा एक एक पौधा लगाने पर और हर बूंद पानी बचाने का संकल्प ले, तो आने वाले वर्षों में हमारी धरती पहले से कहीं ज़्यादा हरी भरी और सुरक्षित हो सकती है। तो याद रखिए, युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं होते, बल्कि प्रकृति से भी सबसे बड़ा संरक्षण बन सकते हैं। तो पेड़ लगाना और पानी बचाना किसी एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। आज का छोटा सा प्रयास आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। तो श्रोताओं, हमारा समय हो चला है चलने के लिए। मिलते हैं आपसे कल ठीक 5 बजे नए टॉपिक, नई बातचीत और नई कार्यक्रम के साथ। मैं हूं आपके साथ अवनी नागर, आपने सुना कार्यक्रम युवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत की इस कड़ी में आप सुनेंगे ये खूबसूरत गीत फिल्म झुक गया आसमान से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, संगीत है शंकर जयकिशन के, बोल है हसरत जयपुरी का।

अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म ममता से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है रोशन ने।

अभी आपने सुना फिल्म हम दोनों से ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। बोल थे साहिर लुधियानवी के, संगीत था जयदेव का। आइए अब सुनते हैं एक और गीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: अभी आपने सुना ये सुंदर गीत लोफर फिल्म से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी सुंदर नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का।

थोड़ी देर में 6:05 पर आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्म संगीत का, उसके बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसानवाणी कार्यक्रम, जिसमें बातचीत का विषय होगा कृषि उत्पादन में ड्रोन की उपयोगिता, और बातचीत करेंगे कैलाश चंद शर्मा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, साथ ही बाजार भाव और मौसम के बारे में भी आप जानकारी पाएंगे। शाम 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी, जिसमें डॉक्टर शंकर बाबू बातचीत करेंगे जल संरक्षण विधियों पर, साथ ही आप आनंद ले पाएंगे लोकगीतों का, बाजार भाव व मौसम के बारे में भी आप जानकारी ले पाएंगे। आठ बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा, ये हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। आठ 8:15 पर आप फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे फिर से। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, जो हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनका समय। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पड़े।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। यह योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
0: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब लुत्फ़ उठाते हैं फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत फिल्म यादों की बारात से। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत था आर डी बर्मन का। आइए सुनते हैं एक और सुंदर नगमा।

अभी आपने सुना किशोर कुमार व साथियों की आवाज़ में ये गीत। फिल्म थी तीन देवियाँ, बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत था एस डी बर्मन का। आइए सुनते हैं अगला गीत।

काला पानी फिल्म से अभी आपने सुना ये सुंदर सा गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। अब इसी कड़ी में सुनते हैं अगला गीत।

आराधना फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर शोर शराबा किया। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा लिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एकीकृत खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई कानून भी नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन हर साल केवल 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। पिछले 3 वर्षों में इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में काफी बढ़ोतरी हुई है और 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भारत पोल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय घटकर 3 से 10 दिन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को अलवर आने का कार्यक्रम है। अपने इस दौरे में श्री शाह करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला,

0: 81,000 से अधिक राज्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2,18,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, दुकानदारों, कारीगरों और उद्यमियों को बिना गारंटी संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ इस योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण मिला है। देश भर में इस साल जून महीने तक योजना के तहत 59 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें लघु उद्यमों को 20,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भौगोलिक संकेत यानी GI टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर GI टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। राजस्थान में 24 विभिन्न उत्पादों को GI टैग्स मिल चुके हैं। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेया गाजी की एक रिपोर्ट।
1: GI टैग कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया सहित राजस्थान के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। GI टैग प्रोडक्ट की पहचान को मजबूती देता है, साथ ही कानूनी सुरक्षा देता है और ये भी बताता है कि उसकी खासियत मूल इलाके से जुड़ी है। सरकार की पहल, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। ये प्रयास GI टैग उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं।
0: और अब मौसम। राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इससे अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलौदी में बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार, इससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की तरफ जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की सीमा क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पाली के भावरी गांव के खेल मैदान में सघन पौधारोपण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं और उनके संरक्षण

0: संरक्षण का संकल्प लिया गया है। उधर जैसलमेर को हरा भरा बनाने के मकसद से नाचना ग्राम पंचायत में हरियाला सावन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत अब तक 1000 पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ईंधन में मिलावट के दावों का खंडन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले से लागू उन्नत और विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 87,000 से अधिक आउटलेट्स में दिन में लगभग 8 से 12 बार जल रिसाव परीक्षण सहित अतिरिक्त जाँच शुरू की गई है। मंत्रालय ने बताया क्लोराइड और सल्फाइड के लिए 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से अब तक पूरे देश में केवल 2 मामलों में क्लोराइड मिलावट पाई गई है और उन पंपों से बिक्री तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खुदरा आउटलेट में संदूषण या मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि OMC को पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। समूचा जिला इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिल रही है। सुबह से देर शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मॉनसून की बेरुखी और कम सक्रियता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के उप महानिदेशक RL असवाल ने आकाशवाणी चूरू केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों और नई योजनाओं की जानकारी दी गई। परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया तथा नव निर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में रोजगार विभाग की ओर से युवा संबल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 727 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिनमें से 541 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद 283 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग जिले में फलोद्यान विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती के साथ फल बगीचे विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से तारानगर क्षेत्र के किसानों को इससे आय बढ़ाने में मदद मिली है। विभाग किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। उधर कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के 50 किसानों का दल गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भ्रमण पर रवाना किया गया है। किसान वहां आधुनिक खेती, जल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी लेकर जिले में नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुरू में गंग नहर स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गंग नहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का आधार रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी बल दिया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मामलों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्राप्त अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया जिससे परिवादियों को राहत मिली। करगिल विजय दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चुरू मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई जबकि सादुलपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सादुलपुर क्षेत्र के मुंदीताल गांव में धानक समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज की परंपरा बंद करने का संकल्प लिया है। समाज के लोगों ने इस निर्णय को सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्च रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के लंबोर खेड़ी गांव के निवासी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से संजय भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, संसद रा दोनों सदन री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती छोटा उद्यम ने फायदो मिलियो और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आर एस आरेरा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखारा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही विपक्ष रा हंगामा रे कारण रोकी जी। विपक्ष रा दला नीट मुद्दा माथे पढ़ेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही समेत कई मुद्दा माथे शोर शराबो करियो। राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्ष रा हंगामा रे बीच शून्यकाल शुरू करियो। विपक्ष रा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या राम मंदिर रो कथित चढ़ावा चोरी रो मुद्दो उठायो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि अयोध्या में राम मंदिर की खिलाफत करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभय चंदारी कथित चोरी ने लेर नाटक करने जनता ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
2: लोकसभा में हंगामारी हालत देखने मिली। सवारा सदन री कार्यवाही शुरू होने माथे अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू करने री कोशिश करी पण विपक्ष रा सदस्य पढ़ेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही रो मुद्दो उठा दियो। विपक्ष रा सदस्य ई मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग कर रिया हा। श्री बिरला सगला सदस्यों सदन ने सुचारू चलावण माए मदद करने री अर्ज करी।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कराधान और दूजा कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करया। इनमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली रा नियमा ने सरल बनावण रो प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय कहो है कि भारत भगोड़ा अपराधियों निपटण सारू खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित करो है। मंत्रालय बतायो कि साल 2021 2026 रे बीच 36 देशों भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। सरकार साल 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू करियो है। साल 2014 पहला भारत रो फगत 37 देशों रे साथ प्रत्यर्पण समझौतो हो और आर्थिक भगोड़ाओं निपटण और वारी जायदाद जब्त करण सारू कोई कानून नहीं हो। मंत्रालय बतायो के साल 2004-2013 रे बीच भारत औसतन हर साल फगत 4 भगोड़ा रो प्रत्यर्पण कर सक्यो, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध विचारू रिया। लाड़ला 3 साल माए इंटरपोल कानियों रेड कॉर्नर नोटिस काढ़न माए घनी बदवारवी है और 401 भगोड़ा अपराधियों रे खिलाफ नोटिस जारी करी जिया है। सरकार भारत पोदरी शुरुआत करी है, जिनरी मार्फत 1432 एजेंसियां ने इंटरपोल जोड़ी जिया है, जिनु जानकारी साझा करण माए लागण वालों भगत 3-10 दिन रोवे गयो है। गृहमंत्री अमित शाह भगोड़ा अपराधियों रा मुद्दा ने देश री संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून बंदोबस्त और राष्ट्रीय हिफाजत रा रूप में जोड़ियो बतायो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रो 16 अगस्त ने अलवर आवण रो कार्यक्रम है। आपरा ई दौरा में श्री शाह कोई 250 करोड़ रुपया री लागत बनन वाला सरस डेयरी प्लांट री नींव धरेला। वे अलवर मेडिकल कॉलेज रा नुआ भवन रो उद्घाटन करेला। गृहमंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने लेर आज वन मंत्री संजय शर्मा री सदारत में एक समीक्षा मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन राठावा एहलकारा केंद्रीय गृहमंत्री रा दौरा री तैयारियां ने लेर बतल करी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख बत्ती परिवारों रो बिजली बिल शून्य वे गयो है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज वणा कहो कि आ योजना नागरिका ने मजबूत बना रही है, इनु स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य कानी बदन में गति मिल रही है। वणा बतायो कि 25,000 बत्ती केंद्रीय और 81,000 बत्ती राज्य सरकार री इमारतों री छत माथे सोलर सिस्टम लगाई गया है। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अजे ताई 2,55,00,000 बत्ती लाभार्थियों ने कोई 2,18,000 करोड़ रुपया रा कर्ज मंजूर कर लिया है। ये योजना री मार्फत छोटा उद्योगां, रेहड़ी पटरी माथे सामान बेचने वाला दुकानदारां, कारीगरां और कारोबारियों ने बिना गारंटी संस्थागत रोकड़ मदद मुहैया कराई जावे। कोई 60% हिस्सेदारी रह साथ ई योजना में महिलाओं री बढ़ चढ़ ने भागीदारी री है। अजे ताई 1,54,00,000 बत्ती महिलाओं ने 67,982 करोड़ बत्ती रा कर्ज मिलिया है। देश भर में इस साल जून महीना ताई योजना के तहत 59 करोड़ बत्ती लोगों ने कर्ज मंजूर करी जिया है। ध्यान जोग है कि आ योजना साल 2015 में शुरू करी जी ही। इनमें लघु उद्यमा ने 20,00,000 रुपया ताई रा कर्ज दिया जावे है। इनु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ने बढ़ावा मिलो है। भौगोलिक संकेत GI टैग स्थानीय समुदाय सारू माली हालात पैदा करण रा मौका देवता सांस्कृतिक विरासत री रक्षा सारू एक मजबूत जरिया रा रूप में उभरियो है। उत्पादन ने वारा मूल ठोड़ू जोड़ने GI टैग पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षित करे है, दुरुपयोग ने रोके है और उपभोक्ताओं रा भरोसा ने बढ़ावे है। राजस्थान में 24 न्यारा न्यारा उत्पादन ने GI टैग मिल चुको है। पेश है न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
4: जीआई टेक कारीगरां बुनकरां काश्तकारां और उत्पादक समूहां ने चोखो बाजार री पिचाण हासिल करण और प्रीमियम बाजारा तक पहुंच बनावण माय मदद करे है। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया समेत राजस्थान रा कई उत्पाद है जिन्हें जीआई टेक मिल चुको है, जो इनरी पहचान ने और मजबूती देवे है। जीआई टेक प्रोडक्ट री पहचान ने कानूनी हिफाजत देवे है और ओई बतावे है वारी खासियत मूल इलाका से जुड़ी है। सरकार री पहल रोकड़ मदद, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म री मार्फत इनरो आर्थिक सिस्टम मजबूत हो रियो है। आकोशिश जीआई उत्पादा ने ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास रा संचालन रा रूप माए बदल रहा है।
2: जानिया मानिया शिक्षाविद और त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल रा पहली रा राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल आज देवलोक वे गया। वे 90 साल रहा वणा महाराष्ट्र कोल्हापुर माय आपरा रहवास माथे आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाटिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं रा पसारा सारू महताऊ योगदान दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा देवलोक होण माथे शोक जतावता आपरा संदेश माय लिख्यो के श्री पाटिल ने गरीबा रा जीवन ने अच्छो बनावण सारू काम करियो। गृह मंत्री अमित शाही वारे परिवार जनारे प्रति शोक जतायो है। अठीने राज्यपाल हरिभाव बागड़े वारे देवलोक होण माते शोक जतायो है। अरब मौसम राज्य रे ऊपर बण्यो कम दबाव रो हल्को, अबे उत्तर अगुणी राजस्थान माए परिसंचरण तंत्र माए बदल गयो है। इणु आवता कुछ दिना ताई प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए मौसम रो न्यारो न्यारो रूप देखण ने मिल सके है। कठई मझलाऊ तेज बिरखारा आसार है और कठई उमस भरी गर्मी लोगारी परेशानी बढ़ा सके है। मौसम महकमा मुजब उत्तर अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनरा असरों भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए कठई कठई हल्काऊ मझला दर्जारी बिरखा होण रा आसार है। भरतपुर संभाग माए कुछ थोड़ा गरज और तेज हवा रह साथ है भारी बिरखाई दर्ज वह सके है। वठई 6-8 अगस्त रे बीचे अगुणी राजस्थान माए नुआ परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होवणु मझलाऊ तेज बिरखारी आस है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आथुणी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी माए बिरखारी गतिविधियां माए कमी रा आसार है। इणु उमस भरी गर्मी बनी रह सके है।
5: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की तरफ जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
2: हरियाणो राजस्थान अभियान रे तहत पाली जिला रा भावरी गांव रा खेल मैदान माए सघन पौधरोपण करी जियो। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए भांत भांत रा पौधा रोपी जा है और वारा संरक्षण रो संकल्प ली रिजियो। जैसलमेर ने हरो भरो बनावण रा मकसदू नाचना गांव पंचायत माए हरियाणो सावण अभियान शुरू वियो। इन रे तहत अजे ताई 1000 पौधा लगाई जा है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ले रहो। संसद रा दोन्यो सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्या रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल माए 36 देशाओ 274 भगोड़ा अपराधियां ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश माए अजे ताई 2,55,00,000 32 छोटा उद्यमियां ने फायदो मिलियो। और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काओं मजदा दर्जारी बिरखारा आसार। नईंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
6: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली चिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ये आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाया ने बैणा ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम। और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भुआ भाईली सब ने ढोगर जैसा। और महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचलवेन आपने और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं बाने भी घनी मोकली राम राम सा।
6: देखो रामा श्यामा आपा करा हाँ ढोक देवा हाँ, और आपा जाना हाँ कि अपना जो श्रोता है अपना जो काश्तकार भाई बहन है वे बहुत ही मुस्तैदी से इंतजार करे है अपना कार्यक्रम रो, क्योंकि आपा न सिर्फ खेती बाड़ी की बात करा हाँ बल्कि खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा जो नवाचार है जो जानकारियाँ हैं वहाँ तक पुगावा हाँ और कोशिश करा हाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काश्तकार है वे जागरूक हो सके।
7: बिल्कुल, देखो जो एक परंपरागत खेती है बतो किसान भाई बहुत समस्याओं करता आ रहे हैं, पर नवाचार इसी चीज़ें जिन्हें अपना के देखो एक नए तरीके से खेती करा एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बिना अपना के और खेती कमाए कौन कौन सा जगह नया प्रयोग हो रहे हैं कौन कौन सी जगह खामे ही माने दूर करके अपना किसान भाई आगे बढ़े।
6: खामिया की जब आप बात करो महेश भाई, एक खामी जो नजर आवे बा है खेती कर ली फसल मिल गई बी के पाछे कहीं जो फसल का अवशेष बच जावे है वह एक सिरदर्दी बन जावे है। बाड़ा तो भाई जो अपनी वायु है प्रदूषित हो जावे, अठीने बठीने फेंका तो भी कचरो फैले, तो करा काई।
7: भाई देखो किसान भाई जका फसल कटाई के बाद में जका फसल अवशेष बच जाए ही तो इसे हम देखें कि भी एक तो देखो मजदूरी महंगी होगी समय के साथ और ट्रैक्टर को खर्चो भी ज्यादा, तो फसल अवशेष ने निकालना थोड़ा महंगो लगे तो यह सोचा कि भी अब अगली फसल की बुआई करनी है तो लो भी फसल अवशेष ने जड़ा देवा, पर फसल अवशेष जिया आप जड़ा मा तो धुओं धप्पड़ हुए और जो जकी गैस ही जी कार्बन डाइऑक्साइड है जकी जहरीली गैस ही वह वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल प्रदूषित हो और जका श्वसन संबंधी रोग ही वह आप देख रहे हैं कि जका शहर कमाए कतरा ज्यादा बढ़ता जा रही जका संपर्क में आवे जी अपने फसल अवशेष जराने से
6: जी। अब ई में आपा काई कर सका हाँ कि आपा जो फसल अवशेष है जो बचोड़ी आपने कचरो जी ने आपा समझा बीसू भी आमदनी कर सका हाँ।
7: अच्छा
6: अशा अशा नवाचार हो गया जी, पराली की बात करा इन्हें आप मशीना के द्वारा एकटो करो हो दबाओ हो और बिने छोटो कर लियो हो अभी के बाद में बन जावे एक केक जैसी आकृति। अब वह काम में आवे है आपके मशरूम उत्पादन में एक बेड की तरह। तो हो गया ना कि जो आपा सोच रहा है कि यह तो कोई काम की चीज को नहीं बेकार है बीसू भी आपा बेचर आमदनी कमा सका हाँ।
7: बिल्कुल, और फसल अवशेष कमाए जी आपा देखा हाँ कि जब फसल अवशेष बच जाए ही तो जबकि केंचो की खाद है यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फसल के लिए उपयोगी खाद है, तो फसल अवशेष के माए जब आपा गोबर के साथ में केंचुआ छोड़ देवा तो जकी वर्मी कंपोस्ट खाद है बिने केंचुआ तैयार कर दी और अतरी चौकी खाद है जकी फसल ने पोषण देवे और किसान भाई के लिए लाभकारी यह भी बन सके है।
6: और जी आपा बात करा केड़ा की फसल कई लोग उद्यानिकी में लेवे है, अब केड़ो तो एक बार फसल देवे है फल दिया बेकार, अब कहीं करा काट और बिने फेंक दिया, पर अगर आप इन्हें अहिया ही फेंक दो ला तो आप

0: नुकसान उठा जाओ ला, क्योंकि केला का जो तना है, अजैविक खाद, लिक्विड तरल खाद और बहुत सारा ऐसा उत्पाद बना के काम में आवा है। केला का तना से निकल वालो जो रेशो है, एक मजबूत धागा का रूप में काम में आवे है। केला का पत्ता पैकिंग करवा के काम में आवे है। और कई तरीका के जो भोज्य पदार्थ है, कि टोकरियां बने हैं जो भाप पर रखी जावे, बी में भी यो काम में आवे है। और औषधीय गुण तो इका है ही है साहब।
1: और देखो, एक जगह किसान भाइयों के लिए एक चारे की समस्या है कि गर्मियाँ कमाए तो को हरे चारे की समस्या आवे, पर अबार हरे चारे खूब हो जाए, पर पशु ने हरे और सूखो दोनों प्रकार को चारों चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में।
0: जी
1: तो अबार क्योंकि देखो ज्वार बाजरे की कड़वी के साथ में आपा जिया की गेहूं को भूसो बच रहे, धान की पराली बच रही है, तो बिना बरसीम के साथ में मिला के पशुओं ने खिलावा तो बहुत ही चोखो आहार बने मिल सके।
0: बिल्कुल
1: ज्वार बाजरे की कड़वी और गेहूं को भूसो धान की पराली ने बरसीम के साथ में मिला के खिलास का।
0: बिल्कुल। और अब बाता चीता तो बहुत होगी, अपना पावना भी आवाड़ा है, बांसू भी बाता चीता आपा कर शां, पर जब तक वे आवे है, बाकी अगुवाई में ही सही एक गीत सुना दियो सा।
1: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: वाह महेश भाई, गीत तो बहुत चोखो संजोड़ ले आया। अब जी हाँ, गीत आप ले रहा है भैया, जानकारियां की तरफ भी माने ले चालो साहब।
1: किसान वाणी सुनवाड़ा साहब साथ ने राम राम। किसान माया आपने बीच आज मौजूद है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आए हैं और आपसे आज मैं बातचीत कर सया कृषि उत्पादन का माए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। तो डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, कृषि उत्पादन का माए ड्रोन की काई उपयोगिता है, इस विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली तो माका जगह किसान भाई ही बाना यही बताओ कि ड्रोन होए काई है।
2: ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होता है जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ाया जाता है। कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को खास तौर पर खेतों में छिड़काव और निगरानी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है जिसकी क्षमता 10 से 30 लीटर होती है, बैटरी सिस्टम होता है, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम होता है, स्प्रे नोजल होता है तथा कंट्रोल इसमें होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो खेती के माय जो ड्रोन है भी को कई उपयोग है, किस प्रकार से यो काम आ सके?
2: किसान भाई, खास तौर से ड्रोन का उपयोग फसल छिड़काव पर के लिए करते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग उर्वरक छिड़काव, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायनों के छिड़काव एवं अन्य अनुमोदित रसायनों के छिड़काव हेतु किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। इसके साथ ही फसल के स्वास्थ्य की जांच, मिट्टी एवं खेतों में लगाई गई फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मानव श्रम से इस कार्य में कई दिन लग सकते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है, तो ड्रोन वही काम कुछ ही समय में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मौसम संबंधी जानकारी या मृदा को विश्लेषण इका माय जो ड्रोन है वो की प्रकार से सहायता करे आपने?
2: मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। इस जानकारी का उपयोग किसान भाई अपनी फसलों की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। तूफान, बारिश या जलवायु संबंधी अन्य अवस्थाओं में कमी की पूर्व सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी।
1: जी और डॉक्टर साहब, यदि अपना जगह किसान भाई वह खेत का माए कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहे या पशुओं को प्रबंधन करना चाहे, तो इका माए जो ड्रोन है वो कहीं उपयोगी साबित हो सके के?
2: हाँ, ड्रोन जो है पेड़ और फसलें लगाने में मदद करते हैं। इससे श्रम तथा ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही इसमें बजट भी ड्रोन के उपयोग करने पर कम आता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किसान भाई न केवल अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने मवेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन में थर्मल सेंसर तकनीक लगी होती है, उसके द्वारा वो जानवरों को खोजने में मदद करती है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि के माय ड्रोन की बात करें हाँ, तो इसमें ड्रोन का कई कई लाभ ही कृषि के माय?
2: ड्रोन से खेती बाड़ी में बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर से ड्रोन मैनुअल जो है छिड़काव की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है। दूसरा, ड्रोन से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही एक एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक दिन में 30 से 40 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव कर सकता है और एक बार में 15 से 20 लीटर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक आदि को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ड्रोन के उपयोग से 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक एवं फफूंदनाशक की बचत की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ड्रोन का फायदा तो आप बता रहे हो, किसान भाई ने काफी मदद भी मिला है खेती के काम में, पर किसान भाई सोच रहे हैं कि भी ड्रोन की जो कीमत है वह कतरी होवे है लगभग और कतरे पैसा कमाए आ जाए।
2: ड्रोन जो है अलग अलग तरह के बाजार में मिलते हैं। खास तौर से 10 लीटर की क्षमता वाला ड्रोन जो है वो 3 से 4 लाख रुपए में आता है। इसके अलावा 20 लीटर क्षमता वाला ड्रोन 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत होती है और 30 लीटर वाले बड़े ड्रोन की कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो का कृषि उपकरण हुए वहाँ पर सरकार सब्सिडी देवे है, किसान भाई ने सहायता देवे है, तो ड्रोन यदि किसान भाई खरीदना चाहे तो कहीं इस पर भी कुछ सरकार सब्सिडी देवे?
2: हाँ, भारत सरकार जो है कृषि ड्रोन को खरीदने पे सब्सिडी देती है। किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषक उत्पाद समूह और कृषि संस्थाओं को भी अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी सहायता दी जाती है, इससे छोटे किसान भाई ड्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।
1: जी और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई कन देखो ड्रोन उपलब्ध कोनी होगा कई बार, पर यदि कोई सक्षम किसान भाई ड्रोन ले आके यदि दूसरे किसान भाई ने उपलब्ध कराना चाहे तो इस प्रकार को जो व्यवसाय है बिना की प्रकार से कर सके?
2: किसान भाई अपनी क्षमता के अनुसार ड्रोन को खरीद कर इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई कृषि ड्रोन से बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके साथ ही ड्रोन खरीदना होगा, गाँव में अपनी सेवा का प्रचार प्रसार करना होगा और ड्रोन सेवा शुल्क प्रति एकड़ रुपए 300 से लेकर 600 रुपए तक ले सकते हैं। इससे सीजन में अच्छी कमाई संभव है। एक ड्रोन से महीने में 1-2 लाख रुपए तक कमाई संभव है। यह सीजन पर निर्भर करती है। अनुमानित है जो ड्रोन होता है वो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है और उसकी कीमत रुपए 400 रुपए प्रति एकड़ होती है छिड़काव की, और साथ ही कुल जो है 8000 रुपए प्रतिदिन उससे हम कमा सकते हैं। सीजन में पूरे महीने में ड्रोन जो है 20 दिन काम में लिया जा सकता है, जिससे 1,60,000 रुपए प्रति माह की इनकम किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं खेत कमाए, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि ड्रोन के इस्तेमाल में किसान भाई ने ध्यान रखनी चाहिए?
2: किसान भाइयों का को ड्रोन का प्रयोग करते समय बहुत सी सावधानियां रखना जरूरी है, खास तौर से जब तेज हवा चल रही हो, बारिश आ रही हो या तूफानी मौसम हो रहा हो, उस समय ड्रोन की उड़ान नहीं करें। बैटरी जो है पूर्व में चार्ज रखें। इसके अलावा सही मात्रा में दवा का घोल बनाएं उसमें, और सुरक्षा उपकरण पहने तथा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेवें। हमेशा प्रमाणित ड्रोन एवं प्रशिक्षित पायलट का उपयोग करें। खेत का पहले निरीक्षण करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही ड्रोन की नियमित मेंटेनेंस भी करवाते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन से कीटनाशी रसायन को स्प्रे करें खेत का माए, तो स्प्रे करवा को सही समय काई है, की टाइम करना चाहिए?
2: किसान भाइयों को ड्रोन से स्प्रे करते समय खास तौर से सुबह के समय 6-10 बजे का समय और शाम के समय 4-7 बजे तक का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय में हवा की गति जो है बहुत कम होती है और दवा का प्रभाव जो है बेहतर तरीके से होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ड्रोन का बहुत सारा फायदा बताया और ड्रोन जो है किसान भाई को खेती में समय भी बचावा है, बिना कई प्रकार से सहायता भी मिले है, और तकनीक जो है धीरे धीरे बदलती जा रही है, किसान भाई भी नवाचार कर रहे हैं, तकनीक के माध्यम से जो है खेती के माये आगे बढ़ता जा रही, तो ड्रोन का भविष्य ने आप की प्रकार से देखो वो कई संभावना ही।
2: किसान भाइयों, ड्रोन का आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में जो कृषि है वो तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ड्रोन तकनीक आगे चलकर इन क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी, जैसे फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए, मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए, सटीक पोषण प्रबंधन करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म ऑटोमेशन के लिए, जलवायु आधारित खेती करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और भविष्य में ड्रोन केवल स्प्रे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगा। अतः ड्रोन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपा स्प्रे की तो बात करिया, पर ड्रोन के माध्यम से जगह दानेदार उर्वरक हो को भी छिड़काव किया जा सके की?
2: हाँ, दानेदार उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। कुछ विशेष प्रकार के मॉडल्स आते हैं जिनमें ड्रोन के जिनमें ग्रेनुल स्प्रेडर अटैचमेंट होता है, लेकिन अधिकतर ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये मेरी सलाह है कि वो अपना अगर वो दानेदार उर्वरक छिड़कना चाहते हैं तो विशेष प्रकार का मॉडल ही काम में लेवे उसके छिड़काव के लिए।
1: जी और डॉक्टर साहब, कौन कौन सी इसी फसलें हैं जहाँ का मैं ड्रोन ज्यादा उपयोगी साबित हो?
2: खास तौर से ड्रोन का उपयोग किसान भाई धान की फसल में, गेहूं में, कपास में, मक्का में, गन्ना में, सोयाबीन में, सब्जियों में कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े खेतों में जहाँ पर फसल की जो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फसल बड़ी होती है, उनके लिए जो है किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फायदे के साथ कर सकते हैं।
1: और अब चलता चलता जगह मक्का किसान भाई ने ड्रोन के बारे में यदि और कोई जानकारी या कोई जरूरी बात आप बताना चाहो तो आप बता सको।
2: देखो किसान भाइयों, आजकल जो है मशीनी युग का जमाना है और खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेष जोर दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है ड्रोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार करते रहें, और आप ड्रोन के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ड्रोन खरीद कर अन्य किसान भाइयों को उसको किराए पर दे सकते हैं और उससे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
1: तो किसान भैया, यही जानकारी कृषि उत्पादन का माय ड्रोन की उपयोगिता के बारे में और यह जानकारी आपने दी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आया और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
2: राम राम।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: भाई महेश भाई, बहुत सांतरी जानकारी दिला दिया आप तो, और जो अपना कैलाशचंद शर्मा जी पावना आया भाई, बहुत चौकी जानकारी दिया भी।
1: किसान भाई सुनिया और बहुत आनंद भी लियो जानकारी को।
0: और देखो नवाचारा की आप बात करी रहा है, और नवाचारी एक जो ड्रोन प्रक्रिया है वाकई काम आवेली और काम आ रही है, बहुत सा काश्तकार काम में ले भी रहा है, और जिका नहीं जान रहा अच्छा भाई आज कार्यक्रम सुनर जाने गया वेला, तो आप दोनों ही बधाई का और धन्यवाद का पात्र हो। और चूंकि धन्यवाद को रोको नहीं देवा, तो मुझे चौपाल की रीत सुना दिया था ने गीत।
1: बिल्कुल सुना सर।

0: हाँ तो चंचल बेन,
1: जी
0: देखो पहली तो हमारे पास सुना काले बैल किनारे चले छोटू राम पार्टी की आवाज में लोकगीत,
1: बिल्कुल
0: और अब आपा सुना महारा छैल भंवर का अलगोजा आली जा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे हो।
1: बिल्कुल। और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया काई मंडी को भाव रहे हो आज को।
0: बिल्कुल
1: तो साहब से हूँ पहली बात करा सरसियों की। डीक की मंडी में सरसियों रो भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल। जयपुर की मंडी में सरसियों को भाव 8,500 रुपया। भरतपुर की मंडी में सरसियों को भाव 8,000 रुपया। खैरतलरी मंडी में सरसियों को भाव रहे हो 8,000 रुपया। और सीकरी डीक की मंडी में सरसियों को भाव रहे हो 7,620 रुपया प्रति क्विंटल। बठई बात करा गेहूं की तो श्री डूंगरगढ़ की मंडी में गेहूं को भाव 2,575 रुपया। कपासन की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। बस्सी की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। और ओसियन मथनिया की मंडी में गेहूं को भाव रहे हो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। जठेताणी बात है तारामीरा की। डेगाना की मंडी में तारामीरा रो भाव 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। मेड़ता की मंडी में तारामीरा रो भाव रहे हो 5,250 रुपया प्रति क्विंटल। सादलपुर की मंडी में ग्वार की अगर बात करें तो भाव रहे हो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार को भाव दौसा की मंडी में 5,640 रुपया प्रति क्विंटल को रहे हो साहब।
0: और चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल भी बता देवा,
1: बिल्कुल साहब
0: तो
1: गजब ही कर रहे हो मौसम।
0: पिछले 24 घंटा का माय जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे हो 27 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। अगला 24 घंटा का माय जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा की, और मे छाट हो सका है क्योंकि बरसात को समय, तो यह है मौसम की संभावना।
1: बिल्कुल साहब। और अब संभावना यह है कि घड़ी आंखियां काडर कह रही है बहुत होगी बातचीत। आप चालो पिटारी ने समेट लियो किसान वाणी सु ले लियो आज्ञा और करो राम
0: राम राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का किसान वाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन

0: में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
0: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रूपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: खेती बाड़ी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम, और चंचल बहन आपने भी राम राम।
3: राम राम महेश भाई, आपने भी घने मानू राम राम, और सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो हरियो भरो सु राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा ने ढोगर जैसा।
2: बिल्कुल, देखो ढोक तो होगी, और किसान भाइयों की बात करा तो महीने की शुरुआत है, अगस्त को महीना है।
3: बिल्कुल,
2: तो किसान भाइयों का काम जो का खेती बाड़ी का ही बस समय के साथ साथ होता रहे, तो जदी जाए खेती में चोखो उत्पादन मिले।
3: बिल्कुल,
2: तो ई महीने की देखो जो का जरूरी काम ही कृषि बागवानी का। तो बाकी अगर आप बात करा खरीफ की फसल की चोखी बढ़वार के लिए जबकि खरपतवार हुए बिने निकालना जरूरी है, तो निराई गुड़ाई अपने करनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल सही बात है,
2: तो इसी खरपतवार नष्ट हो जाए और साथ में जो मिट्टी है बी कमाए हवा को संचार हुए और ऊपरी जकी पपड़ी की परत है बा टूट पासी नमी को संरक्षण भी हो जाए। तो बरसात ना हो रही है तो निराई गुड़ाई बहुत चोखी है, और गुड़ाई के बाद में जब पर्याप्त नमी है बरसात होने के या सिंचाई की सुविधा हुए तो अनाज वाली और तिलहन की जो की खड़ी फसल है बीमा अपने यूरिया छिटक कर देनी चाहिए।
3: और क्योंकि नमी ई मौसम में रहवे है, तापमान में थोड़ी सी उमस रहवे है, तो रस चूस वाला जो कीड़ा हो वह बहुत नुकसान पहुँचा सके अपनी जो फसल है। तो ए जो कीड़ा है या तो खुद से नुकसान पुगावे या फिर फसल में जीवाणु जनित जो रोग होवे है बांका ए कारण बन जावे है। अब आने रोकवा के ताई आपने चाहिए कि नीम आधारित कीटनाशक इमें काम में लेवा, जिमें निम्बाडीन है 0.3% 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनार छिड़काव आप इनको कर सका हाँ। इके अलावा है जैसे आप बात करा बाजरो है, ज्वार है, मक्का है, फड़को है, आमे सैन्य कीट को प्रकोप भी दिखाई देवे है। तो इके ताई मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनालफॉस 1.5% चूरण ने 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर सका साहब।
2: मूंग चवड़ा और मोठ की फसल की बात करा तो एक मैं फली छेदक जबकि लट है बी को प्रकोप दिखाई देवे, और जब दिखाई देवे तो मोनोक्रोटोफॉस 36 WC या क्यूनालफॉस 25 EC 1 लीटर या कार्बेरिल जकी दवाई है ने 50% घुलनशील चूर्ण ने 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दरसियों फूल और फली आवासियों पहली छिड़काव करना है।
3: जठे ताणी बागवानी की बात है ना महेश भाई, तो नींबू का जो पौधा हो वह भी मैं नींबू की तितली आपा सब जाना ही है बहुत ही तांडव मचावे है, तो इन रोगबा खातिर आपा ने क्यूनालफॉस EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनार छिड़काव करना चाहिए। दूसरी जी की बागवानी की फसल है जिन्हें आपा कहवा हाँ आंवड़ो, आपा सब जाना हाँ बहुत औषधीय गुणी में हुए है। आंवला का पौधा में अगस्त में बोरेक्स 0.4% और जिंक सल्फेट 0.2% रो छिड़काव आपा ने करना चाहिए।
2: बेर के पौधे की बात करें तो फूल जब खिले तो परागण के लिए मधुमक्खी बना बगीचे कमाए अपन जकी वह भ्रमण कर सके, तो ई टाइम जो कीटनाशी दवाई ही माँ को छिड़काव अपन नहीं करना चाहिए। पपीते के पौधे कमाए यूरिया 25 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अपन देनी है और समय पर निराई गुड़ाई करनी है।
3: बिल्कुल साहब,
2: सब्जियों की थोड़ी बात कर ले आप।
3: बिल्कुल, सब्जियों की बात करा तो देखो जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, प्याज, गोभी जैसी अपनी जितनी भी रोपाई की जो समय आ रही है इनमें 6 इंच बड़ी और स्वस्थ पौधा को आपने चयन करना है। दूसरी जी की बात है कि पौध रोग रहित होना चाहिए, और पत्तिया की जो नशा है अगर आपने फूलोड़ी सी दिखे है तो इमें कोई वायरस को संक्रमण हो सके, इको भी आपने ध्यान रखना है। इके ताई काई करा कि अशिया जो संक्रमित आपने पौधा दिखे है बाकी रोपाई आपने करनी नहीं है, और पौध की रोपाई से पहली एक काम करना है वो काई है कि ट्राइकोडर्मा को जो टीको है वो आपने जरूर सु अपनी फसल में लगाना है, और 5 लीटर पानी में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोला, और ई घोल में पौधा की जड़ ने आपने आधा घंटा ताने का ही करना है, डुबार रखना है, इके पाछे ही खेत में आपने रुपाई करनी चाहिए। आप आता को आपने ध्यान रखना चाहिए साहब।
2: बिल्कुल, और फूल गोभी

0: कोई काश्तकार बहन है जो कि बिल्कुल इंतजार कर रही है, खेती बारी कर रही है, और रिमझिम हुई बिने भी को भाई याद आ गयो कि आज बागा में रिमझिम हो रही, और रवि प्रकाश नाग की आवाज में बहुत सांतरों गीत आप सुनाए, और तो मन थोड़ा सा यहाँ हो गया कि मने मारा भाई की याद आ गई साहब।
1: बिल्कुल, तो यही है देखो लोकगीत की खासियत कि अपनों जो मन है बीच में जुड़ जाए और आप महसूस कराएं कि भी देखो लोकगीत में कहीं बात हो रही है।
0: बिल्कुल। और अब जो बात की बात है, जय विकुम बैंड सामने बैठ गए पावणा ने लेर, तो अब आगे के कार्यक्रम की बागडोर आने समड़ा दे और आपा बैठर दोनों जानकारी सुन
1: ले
0: लिया।
1: वहां सर
0: बिल्कुल।
2: करसा भार भेणा, आज आपा के सागे है डॉक्टर शंकर बाबू, संयुक्त निदेशक जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान के मायने कार्यरत छे। और आज आपने यह बतावेला कि राजस्थान के मायने जल संरक्षण गतिविधियां की तरीका की होनी चाहिए जे और की तरीका की चाल रही है। तो सबों पहली शंकर बाबूजी था को घणो घणो स्वागत है। राम राम सा।
1: राम राम साहब।
2: सबों पहली में ये जानवो चावला कि खेती के मायने पानी को महत्व सभी जाना हाँ, पर राजस्थान के जद बात करा तो अठे पानी री कमी रहवे है। तो ई के बारे में महा को जो कृषि विभाग है वो काई प्रयास कर रहे है, ई के बारे में मैं जानकारी दियो सा।
1: देखिए किसान भाइयों, आप जानते हैं कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर 10% भूभाग है देश भर का, परंतु एक मोटे अनुमान के अनुसार जो सतही जल है उसकी उपलब्धता केवल 1% है। तो यानी यहाँ पानी की थोड़ी सी कमी अपने राजस्थान में रहती ही है, आप सभी जानते हैं। इसलिए पानी का प्रबंधन यानी जल प्रबंधन कैसे करें वो हमारी सर्वोच्च सबसे बड़ी प्राथमिकता या सबसे बड़े महत्व का काम सबके लिए है, चाहे घर में अपन पानी काम में लेते हों चाहे खेती में काम में लेते हों। तो खेती में जब अपन बात करते हैं तो देखिए जितना भी पानी है उसका 80% खेती में काम में आता है। तो साहब खेती में पानी का प्रबंधन कैसे करें उसके लिए राजस्थान सरकार और यानी कृषि विभाग ने मुख्यतः दो तीन गतिविधियाँ किसानों के लिए खास तौर से चला रखी हैं।
2: जी सर।
1: जैसे बारानी क्षेत्रों में जहाँ जो है सिंचाई के साधन नहीं है और वर्षा पर आधारित ही खेती होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में और किसानों को ये सुझाव और सलाह दी जा रही है कि भाई खेत तलाई बनाएं। तो
2: जी
1: एक बड़ा काम तो ये है कि भाई किसान खेत तलाई बना करके और जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा कर लें और फिर उसको खेती के काम में लें। दूसरा, जो पानी उपलब्ध है उसका भी कुशलतम उपयोग होना चाहिए, यानी उसका भी उपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई हम पानी हमारे पास है तो वो बेकार चला जाए। तो पूरा का पूरा फसल उगाने के काम में आवे, बेकार बिल्कुल नहीं जावे, उसके लिए भी दो तरह की गतिविधियां हैं। जैसे एक है सिंचाई पाइपलाइन,
2: जी
1: तो अपने कुएं से या जल का स्रोत जहां पर भी है वहां से और खेत तक पूरा का पूरा पानी पहुंचे। पहले क्या था, क्यारी धोरे बना करके सिंचाई करते थे, तो उनमें बहुत सारे जो है चूहे बिल बना देते थे, पानी फैल जाता था, भाप बन के भी उड़ जाता था, घास फूस भी उग जाता था, वो खराब कर देता था। अब पूरा का पूरा पानी वहाँ से वहाँ तक पहुँचे उसके लिए पाइपलाइन योजना है। और इसी तरह से नहरी क्षेत्र हैं, अब नहरी क्षेत्रों में नहर का पानी तो पर्याप्त मात्रा में आता है, परंतु उसका भी कुशलतम उपयोग हो, यानी वो भी बेकार नहीं हो, पूरा उपयोग हो उसके लिए, और डिग्गी की व्यवस्था की है ताकि सुविधानुसार जब पानी आ जाए तो उस समय इकट्ठा कर लें और
2: जी
1: जब आवश्यकता हो उसको, और उसमें जब अपने पास डिग्गी होगी तो उसमें ये है कि भाई अपन स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, वो भी अपन काम में ले सकते हैं। ये तीन गतिविधियां खास तौर से कृषि विभाग राजस्थान ने और किसानों के लिए चला रखी हैं।
2: जी सा। पर अठे में ये जानवा चावला कि ज्ञान की आभार थी बताया कि फार्म पॉन्ड जानने की आपा खेत तड़ाई के नाम से जाना हाँ, ई योजना के बारे में महाका किसान भाई भेणा ने जानकारी दियो सा।
1: देखिए किसान भाई, अभी मैंने जैसे चर्चा की कि भाई वर्षा जल को इकट्ठा करना है, तो
2: जी
1: उसके लिए ऐसे निचले जगह पर आपका खेत जहाँ पर है तो जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता हो बरसात का, तो ढलान वाली जगह ऐसे निचला हिस्सा हो उसमें जो है खेत तलाई बनाई जा सकती है। तो सामान्यतः खेत तलाई का आकार जो है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी लगभग 10 फीट गहराई की अपन खेत तलाई बनाते हैं। इसमें न्यूनतम आकार, ये आकार हुआ 1200 घन मीटर, लेकिन इसका कम भी बना सकते हैं, लेकिन अनुदान सहायता है ना 1200 घन मीटर के हिसाब से मिलती है, अगर कम बनाएंगे तो फिर अनुदान कम हो जाएगा।
2: जी
1: तो न्यूनतम 600 घन मीटर की आपको बनानी होती है। इस प्रकार से व्यवस्था थी, लेकिन अभी ये कर दिया कि भाई न्यूनतम 400 घन मीटर की भी बना सकते किसान भाई, तो ये सुविधा किसानों के लिए है। तो निचले हिस्से में खेत तलाई बनाएं, और पूर जैसलमेर, बाड़मेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, यहाँ रेतीली मिट्टी है
2: जी।
1: वहाँ क्या है, पानी का ठहराव तो इतना होता नहीं, इसलिए क्या है उसमें प्लास्टिक सीट लगानी पड़ती है
2: जी।
1: तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लाइनिंग वाला फार्म पॉन्ड, है ना।
2: देखो डॉक्टर साहब, देखवा में आवे कि वहाँ के अठे नहरी क्षेत्र के मायने बोला सारा वहाँ का किसान भाई बहन खेती करे है, तो वहाँ के लिए जो डिग्गी योजना चलाई गई है, बी के बारे में कहीं प्रावधान है, बी का बी की जानकारी दे उसा।
1: देखिए जो नहरी क्षेत्र है, मैंने बताया आपको कि भाई उसमें सुविधा है कि जब पानी आए नहर में तब इकट्ठा कर लें और जब आवश्यकता हो तब उपयोग कर लें, और उस पर एक ये किया है कि भाई जो आपने पानी इकट्ठा किया है डिग्गी में उसको बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से खेत में देंगे तो आपका ज़्यादा क्षेत्र सिंचित होएगा। मान लो पहले 2 बीघा में सिंचाई कर सकते थे तो उसी से 1.5 गुना तक सिंचाई, अगर स्प्रिंकलर काम में लेंगे तो 1.5 गुना तक सिंचाई काम में हो सकती है
2: जी।
1: और मान लो बूंद बूंद सिंचाई काम में लेंगे तो और भी ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है, और बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं। कई किसानों ने जैसे कपास में भी बूंद बूंद सिंचाई प्रारंभ की है, बहुत सारे किसानों ने जो है मूंगफली में भी बूंद बूंद सिंचाई प्रारंभ की है, तो ऐसी सब्जियों में तो किसान भाई काम में ले ही रहे हैं बूंद बूंद सिंचाई जो है वो संयंत्र। तो डिग्गी और उसमें इसके निर्माण के लिए किसान भाइयों को भी बहुत सहायता है। 27.5x27.5 यानी 27.5 मीटर लंबी, 27.5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, इस तरह से करीब उसमें 4 लाख लीटर पानी आ जाता है।
2: माँ का जो किसान भाई कार्यक्रम ने सुन रहा है वो ई पर जरूर ध्यान देवेला। डॉक्टर साहब अबार थे बात करी ही पाइपलाइन की कि जिसे की सिंचाई आसानी से हो सके और पानी की बचत हो सके, तो वहाँ का जो किसान भाई बहन है वो ई को लाभ की तरीका से ले सके है, ई के बारे में बताओ सा।
1: देखिए सिंचाई पाइपलाइन मैंने बताया अभी कि भाई अपने जल स्रोत जहाँ है, कुआ है, ट्यूबवेल है, वहाँ से खेत तक पानी ले जाने के लिए सिंचाई पाइपलाइन है। ये 3 प्रकार की पाइपलाइन जो है किसान भाई काम में ले सकते हैं। एक तो होती है ले फ्लैट जिसको बोलते हैं, जिसको आप जो है फोल्ड करके यानी इकट्ठा करके और किसान भाई रख सकता है ना, तय बना करके इस तरह से गोल गोल उसका वो बंडल बना करके रख सकता है किसान भाई। और जो एक होती है SDPE जो किसान भाई जानते हैं सामान्यतः वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उसमें थोड़ा लागत भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो है पाइपलाइन, आप जिस प्रकार की पाइपलाइन आप खरीदेंगे तो आप जैसे पाइपलाइन भले ही कोई भी खरीदें, मैंने मोटा मोटा अनुमान ये बता दिया, आपको ध्यान में भी होगा कि कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के लिए, उद्यान विभाग की योजनाएं हैं, है ना साहब
2: जी,
1: कृषि विपणन विभाग की योजनाएं हैं, तो इन सभी योजनाओं के आजकल आवेदन ऑनलाइन यानी राज किसान साथी पोर्टल है, उसमें किसान नाम जुड़ा हुआ है
2: जी,
1: राज किसान साथी, उस पोर्टल के माध्यम से लिए जाते हैं, ठीक है साहब। अब वो ऑनलाइन आवेदन यानी आपको कोई भी फाइल बना करके किसी भी दफ्तर में नहीं जाना कृषि विभाग के में, वहाँ ई मित्र पे जाएं या अपना जो खुद आपके, अगर से आजकल तो गांव में लैपटॉप भी हैं, कंप्यूटर भी हैं बच्चों के पास, यहाँ तक कि मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं
2: जी,
1: तो स्मार्टफोन जिनके पास हैं तो उससे भी आवेदन कर सकते हैं। तो राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से, यानी आप अपना जनाधार नंबर डालेंगे उस पर, है ना, आवेदन अपने जो है राज किसान साथी पोर्टल की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आता है किसान नागरिक लॉगिन, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पूछता है वो जनाधार नंबर डालें, जनाधार नंबर डालते ही परिवार का विवरण आ जाता है सदस्यों का, जिस किसान के नाम जमीन है या जिसके नाम अनुदान सहायता लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, उसके मोबाइल पर OTP जाता है, OTP आप दर्ज कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आवेदन वहाँ पर खुल जाता है
2: जी,
1: तो आप आवेदन भर दें उसमें। अब देखो इसमें बड़ी सहूलियत कर दी है
2: जी,
1: तो उसमें क्या है कि ना तो आपको फोटो लगाना, तो नाम, जाति, गांव, बैंक का विवरण, फोटो इत्यादि सब जनाधार से ही आ जाता है उसमें, नहीं तो पहले क्या था पासबुक की प्रति लगानी पड़ती थी, फोटो लगाना पड़ता था, एक आवेदन पत्र आवेदन बना करके और फाइल बना करके विभाग में देनी होती थी, कुछ नहीं करना, आप जो ये जानकारी तो वहाँ तो आ जाती है। अब आपको तो केवल यही है कि भाई कितने बड़ी फार्म पॉन्ड बनाना है, किस जगह पे बनाना है, वो थोड़ा सा चयन करना पड़ता है, और बाकी आवेदन जैसे ही आपने सबमिट किया यानी जैसे ही जमा किया तुरंत हमारे ऑफिस में पहुँच जाता है
2: जी।
1: इस प्रकार की सहूलियत सभी सब्सिडी में है, यही तरीका है।
2: जी, तो या तो बोले आसान कर दियो गयो
1: बिल्कुल
2: है आवेदन
1: बिल्कुल
2: करवो, जिसे कि वहाँ का जो किसान भाई है आसानी से ई लाभ ने अनुदान ने पा सके
1: एक
2: है।
1: और बात है, जैसे मेरे को किसी योजना में अनुदान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो राज्य किसान सुविधा
2: जी
1: गूगल प्ले स्टोर पे और राज्य किसान सुविधा मोबाइल ऐप है, तो अब हमारे राजस्थान के लाखों किसानों ने वो डाउनलोड कर रखा और लाभ उठा रहे हैं। उसमें आवेदन का तरीका भी उसमें बताया गया है
2: जी
1: और आवेदन करने की सुविधा भी मोबाइल के माध्यम से उसमें है, तो वो भी डाउनलोड करके राज किसान सुविधा है ना ऐप, जो मोबाइल ऐप है उसमें सारी जानकारी है और योजनाओं की जानकारी भी है किस तरह क्या पात्रता है। अब जैसे फार्म पॉन्ड की बात करते हैं तो एक जगह पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर है ना, यानी कम से कम 2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए
2: जी
1: एक जगह पर है ना। पाइपलाइन में ऐसी कोई वो नहीं है, और डिग्गी के लिए लगभग आधा हेक्टेयर ज़मीन एक जगह पर होनी चाहिए जहाँ डिग्गी अपन बना रहे हैं। तो इस तरह की पात्रता क्या है ना, किस प्रकार कौन से दस्तावेज आपको लगाने होंगे, तो खास तौर से इन इन सभी का लाभ लेने के लिए जमाबंदी और नक्शा जो पटवारी द्वारा जारी या अपना खाता है उसमें नक्शा जो होता है वहाँ से लेकर के भी आप वो लगा सकते हैं। तो
2: जी
1: इस
2: सर
1: प्रकार से दो ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है इसमें, दो दस्तावेज की। तो ये सारी सुविधा राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप में किसान भाई देख भी सकते हैं और उसी के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं।
2: जी साहब, डॉक्टर साहब कई बार यान हुआ करे है कि पूरी तरह से जानकारी नहीं हुआ करे है, और कई बार बाता ने भूल जावे, ध्यान नहीं रहवे है,
1: बिल्कुल
2: तो जो योजनावा है वहाँ को पूरा पूरा लाभ नहीं मिल सके है। इसलिए वहाँ का जो किसान भाई है वह इसे थोड़ी दूरी बना रखे है, पर वहाँ का जो किसान भाई है वे की तरीका से पूरा पूरा लाभ ले सके, और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जी, ई के बारे में भी बताओ सर।
1: देखो इसमें किसान भाइयों दो एक बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो जब आवेदन करें तो उसमें वो ध्यान रखें, वहाँ एक वो पूछता है आवेदन करते समय वो एक विकल्प आता है कि भाई जहाँ आवेदन कर रहे हैं वो ऊपर दिए गए पते के हिसाब से, यानी जहाँ जनाधार बना हुआ है या आपकी ज़मीन का कहीं पता दूसरा है, तो एक तो वो थोड़ा सा चयन करते समय ध्यान रखें। तो जहाँ आप बनाना चाहते हैं वहीं उसी की जगह, कई बार क्या होता है दो जगह की जमाबंदी होती है, दो जगह रहते कहीं और हैं, खेत कहीं और है, तो जहाँ खेत है वही फिर पता उसमें भरना पड़ता है, तो
2: जी
1: एक और वहीं की जमाबंदी लगती है। एक तो ये है, दूसरा क्या होता है कि जैसे जब मैंने कहा ना जनाधार में ही बैंक खाता जनाधार से ही आता है और उसी में ही जो है अनुदान का भुगतान होता है। कई
2: जी
1: बार क्या होता है बैंक बदल लिया, वो किसान ने बैंक बदल लेते हैं कई बार, या खाता बंद करवा देते हैं और लेकिन जनाधार में वही पुराना चल रहा होता है, तो वो जनाधार में भी खाता उनको सही करवा लेना चाहिए है ना। आवेदन अब जिन किसानों ने आवेदन कर दिया है वो भी बाद में भी सही करवा सकते हैं है ना, आवेदन के बाद भी सही करवा सकते हैं, लेकिन आवेदन तो इसमें क्या होता है पहले प्रशासनिक स्वीकृति निकालते हैं, तो
2: जी
1: आवेदन करने के बाद हम दस्तावेजों की जांच करके और जो दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति। तो कई बार किसान भाई क्या करते हैं खासतौर से डिग्गी में या कई बार फार्म पॉन्ड में ऐसा कर देते हैं या पाइपलाइन पहले ही खरीद लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब
2: जी
1: प्रशासनिक स्वीकृति आपकी निकल जाए उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए या पाइपलाइन खरीद के लानी चाहिए, तो बिल उसके बाद की समय का वही मान्य होता है ना।
2: जी
1: तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। एक और खास बात है, देखो अभी
2: जी
1: अब क्या है कि कई बार जानवर चले जाते हैं, अब जैसे जिन्होंने खेत तलाई बना ली है ना या डिग्गी बना ली, तो उसमें कोई नहाने चला गया, वो तो क्योंकि गहरी होती है, तो उसमें थोड़ा सा किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा और सलाह देना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने फार्म पॉन्ड बना लिए हैं या डिग्गी बना ली है तो उनमें एक रस्सी ज़रूर साइड में होनी चाहिए है ना,
2: जी
1: और या सीढ़ी होनी चाहिए है ना, तो वो लटकी रहेगी एक साइड से, तो वो एक तो प्रावधान करना है। दूसरा चारों तरफ उसके और जो है तारबंदी या फेंसिंग कर देनी चाहिए,
2: जी
1: ताकि कई बार क्या होता है बच्चे नहाने घुस जाते हैं या कोई जानवर चला जाता है, फिर वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखो
2: हाँ
1: आजकल
2: जी
1: गाय भैंस भी बहुत महंगी महंगी आती हैं साहब है ना,
2: जी बिल्कुल
1: और जीवन तो किसी का भी हो तो खतरे में पड़ना ही नहीं चाहिए,
2: जी।
1: तो इसलिए क्या है कि वो भी थोड़ी सी सावधानी किसान भाइयों को अभी रखनी चाहिए।
2: देखो साहब, असी चोखी जानकारी दी आपने डॉक्टर शंकर बाबू, संयुक्त निदेशक जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब, असी चोखी जानकारी के लिए थाको घणो घणो धन्यवाद सा।
0: बिल्कुल, और धन्यवाद करो देवा की रीत कोनी जय विकुम बैंड। तो अब एक गीत सुना दिया।
1: सुनाओ सर।

0: उड़ उड़ रे मारा काला कागला, परवीन मिर्जा की आवाज में चौको सो लोकगीत तो आपा सुनया?
1: बिल्कुल।
0: पर लोकगीत सुनता सुनता अब घड़ी की सुइया इशारो कर रही है
1: बिल्कुल
0: कि भाई देखो देखो कार्यक्रम है खेती बाड़ी बिको टेम पूरा चाले, तो अब दियो महेश भाई ने और
1: चंचल ने आज्ञा
0: और करा सबने
1: राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है। ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संसद समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। इस कड़ी में पहला गाना हम सुनने जा रहे हैं फिल्म आपकी कसम से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है RD बर्मन का। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

अभी आपने सुना फिल्म कलाकार से ये गीत, जिसे गाया था साधना सरगम ने। गीत लिखा था इंदिवर और मनोज कुमार ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत फिल्म सीता और गीता से। स्वर है किशोर कुमार और आशा भोसले के, शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है आर डी बर्मन का।

इसी मधुर गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एसी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरोन कितामोन और वोरापोल थोंगसा एनगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16, 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग युक किम और ते योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
0: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
1: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डोडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21, 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कोजिंग बाम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15, 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21, 17-21 से हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
0: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल, कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
1: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के युदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यो तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे। रौनक कोरिया के जियोन योग जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदांबी श्रीकांत इसराइल के डेनिल डुबोवेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चेन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए तो प्रशांत कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गोबुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुणताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
0: विशाल, ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
1: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा। सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो यूल से होगा और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और मानसी सिंह कोरिया की किम जो युन से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स

0: देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
1: टूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनन ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डूरेंट कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
3: काफी अच्छा लग रहा है, हमारा एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं। आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
0: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
3: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को भी उठा के चलते कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, तो मेन तो हमारा LA20 है।
0: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाहत को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वाश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाहत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
4: 4 years that I've played it, and I've always ended up being really close to it, but not, you know, overturning it. So yeah, I'm really glad that I was able to do it this year. Grown up playing Egyptians for since I've started playing squash, so it doesn't really affect me so much when I go into court. It's just like playing another opponent, no matter what the nationality is. But yeah, I mean, doing it and getting close to doing it after Joshna, like you said, she's growing up, like looking at her playing the tournaments and, you know, watching her play squash, and I've really been inspired by her. So I think just getting to do it after is something that I'm really happy. Talking to my coaches about it and seeing, you know, playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore, so I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. I have 2 events in the PS in the professional circuit before I go for the Asian Games, so I think I'm just focusing on that right now. But of course Asian Games has been in the picture since the last one ended, so just focusing on that and building up to it as well.
0: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है, कोलकाता में डूरंट कप के मैच में मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला साउथ यूनाइटेड एफसी से हो रहा है। नवीनतम समाचार के अनुसार मैच में मोहन बगान ने 4-0 की बढ़त बना ली है।
5: In a Durand Cup group stage match at the Vivek

0: প্রকাণ্ড যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ইন কলকাতা টুডে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফেস সাউথ ইউনাইটেড এফসি। মোহনবাগান হোল্ডস আ 4-0 লিড উইথ মনভীর সিং স্কোরিং 2 গোলস অ্যালবার্টো রড্রিগেজ অ্যান্ড রাহুল বেকে অ্যাডেড 1 গোল ইচ। কল্যাণ লাহা, আকাশবাণী নিউজ, কলকাতা।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
2: साउथ कोरिया के मिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नु आंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलम्बिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियागुआ एलेक्सी निसेर की चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारे शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी। तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनीत और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्य दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट, मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर

0: पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है किस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए
4: अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
4: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
5: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
4: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
7: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
4: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after a successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Asan. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
6: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
8: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. We have a report.
9: The Supreme Court asked the RBI to provide copies of the SOP to the Registrars General of all High Courts and directed states, union territories and law enforcement agencies to ensure the expeditious adoption and operationalization of grievance redressal and money restoration modules. The court also directed states and union territories to operationalize the grievance redressal and money restoration modules and take steps to create public awareness about them. It asked the Registrars General of all courts to apprise subordinate courts of the availability of the modules. The court sought a state-wise and bank-wise report on grievances registered and resolved, directed authorities to expedite cases involving frozen bank accounts, and asked the Interdepartmental Committee to consult banks and intermediaries on preventing digital arrest scams and recovering defrauded money. Reshma Tiwari, Desk Report for Akashvani News.
8: In another decision today, the Supreme Court directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel at petrol pumps until coverage is obtained. A bench of Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra said nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured and called the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Center to Pilot Automatic Number Plate Recognition, ANPR-based insurance verification to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Minister of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated, intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. It informed that between 2004 and 2013, India secured the extradition of only 4 fugitives per year on average, while 110 extradition requests remained pending. The ministry highlighted that previous governments lacked the political will to bring back fugitives, but the current government has made the extradition of fugitives a national priority. In Tamil Nadu, opposition leader Udayanidhi Stalin has been released on bail after interrogation at the Chengipatri police station after being arrested in Chennai this morning on complaints of indecent remarks in his speech. The complaint was filed at the Thanjavur East police station. He was booked under 9 sections, of which 2 were criminal charges. According to the directive of the Madras High Court, he has been freed after completion of inquiry. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi, and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. Later on the day, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the hospital along with Secretary of the Ministry, Samir Kumar Sinha. They inquired about the condition of injured passengers and assured them of all necessary assistance. The Director General of Civil Aviation, DGCA, has initiated a detailed investigation into the occurrence. In Jharkhand, students protesting over alleged paper leaks in Jharkhand Public Service Commission and other recruitment examinations today demanded an inquiry by an independent panel of retired High Court judges from outside the state, saying they no longer trust the ongoing CID investigation. The protesters have been staging an indefinite sit-in in Ranchi since 29th of July. Protesters alleged the state government was trying to whitewash the issue by assigning the probe to the CID. They reiterated demands for a CBI investigation, alleging large-scale irregularities and financial transactions linked to the recruitment process. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as a complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
10: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
8: On media interaction by former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, the spokesperson said that the interaction has been organized by a private media entity. He said the government has no involvement in it and neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. Punjab police has busted 2 ISI-backed cross-border terror modules with the arrest of 9 individuals, including 4 juveniles. 3 pistols along with 9 live cartridges and 4 petrol-made bottle bombs have been recovered from their possession. Their preliminary investigation has revealed that the accused were also involved in conducting surveillance of security installations. They had installed surveillance cameras near railway tracks as well and were sharing the footage with foreign handlers. Further investigation is underway. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on the 27th of October. The poll body said that citizens can file claim and objections from the 24th of this month till the 23rd of September. President Draupadi Murmu today visited the revered Ma Kunduni Devi Temple at Taptapani in Odisha's Ganjam district and offered prayers to the goddess. The visit was part of an ongoing 3-day tour of a home state. We have more from a correspondent.
11: President Draupadi Murmu today visited the revered Ma Kanhuni Devi temple at Taptapani in Ganjam district and offered prayers to the goddess. She also offered prayers at an ancient Lord Shiva temple. Earlier in the day, she travelled from Bhubaneswar to Berhampur by the presidential train, which had arrived from Delhi. From Berhampur, the president covered about 75 kilometers by road to reach the temple. She was accompanied by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kamhampati and Chief Minister Mohan Charan Majhi. The president will return to Berhampur this evening and stay overnight at the Army Air Defence College in Gopalpur before travelling back to Bhubaneswar by the special presidential train tomorrow. Prakash Das, Akashvani News.
8: Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia today felicitated Indian athletes who returned from the Commonwealth Games 2026 after delivering historic performances in boxing, judo and para-athletics. During the felicitation ceremony held in New Delhi, the medal winners were presented cash awards of 30 lakh rupees for gold, 20 lakh rupees for silver and 10 lakh rupees for bronze. Interacting with the athletes, Dr. Mandavia asked the athletes to think beyond their playing careers and become contributors to the next generation of Indian sport. The minister highlighted the revamped Khelo India scheme of worth rupees 36,000 crore. He said that this initiative will take care of greater continued investment in the growth of Indian sports in the coming years. In badminton, unseeded Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy upset 6 seeds C. Charo N. Kitamorn and W. Thongsa Naga of Thailand 21-16-21-18 to advance to the men's double second round at the Korea Masters Tournament in Asan today. However, India's other men's doubles pair of Achyuta Ditya Rao and Dodavarapu and Arjun Reddy Pochana lost 3-21-10-21 to second seed Choi Solgyu of Korea and Goh Wei Sham of Malaysia. India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and parts of Northeast India for the next 2 days. Similar weather conditions are expected over Kerala, Mahe, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry and Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Karaikal, Karnataka, Jharkhand, Odisha and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi witnessed rainfall today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy advances to men's double second round at Korea Masters Tournament in Assam. And that is all in the news at 9. Good night.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हका खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवाने बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू मनोज जी।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
2: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हुई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डंप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम टू के बाद फेम थ्री भी कह सकते थे लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ना ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंदर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अगर थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे।

0: और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है, पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था, जिसमें काफी गाड़ियां बिकी है। इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो, टू व्हीलर्स सारे पिकअप हुए और बसेस भी काफी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के, बट काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अपने। जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को। तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में।
1: यहाँ पर रोनिंदर थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियां विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
0: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते हैं तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले। फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को। उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में, जो सेप्टेम्बर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना अनुमान लगा देते हैं कि भाई इसमें अगर हमको इतना परसेंट देना है कस्टमर्स तो हम भी अपना प्राइस को इतना कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है, जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए भी यूज करूंगा चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने भी खुद भी आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
1: जी जी।
0: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि ओईएम्स ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ गाड़ी का बैटरी जो है वो उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका कि कुछ भी वेयर एंड टियर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती कि अच्छा मेरे को मैं ईवी यू नो मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा मुझे अच्छी नहीं लगी क्या नहीं, तो आपको अशोर्ड बायबैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली तो आपको अशोर्ड बायबैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है आपने 3 साल चला ली जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब दे डोंट सी उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा। तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं इस साल के शुरुआत से।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल है उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
0: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है
1: जी।
0: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर, क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है सेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो, उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का टू व्हीलर का थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं छोटे कह लें कि शहर हैं वहां भी हम थ्री व्हीलर का टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो टीयर टू हमारे टीयर थ्री टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर है जो 1 टन के नीचे आते हैं जो छोटा ट्रक जिसको बोलते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी अब एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि ऑल्सो केयर फॉर एनवायरमेंट, उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर या छोटा फोर व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर के सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। उसके बाद आता है फोर व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो करीबन 30,000-32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का।
1: जी
0: तो उसमें से अगर 30-40 हजार भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो वो ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है। और PM ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों को होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का अभी कमी है। लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे असम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो,
1: जी
0: आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो। अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने अभी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च देवी करके जो
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बसेज जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए JBM या टाटा अशोक लेलैंड के।
1: जी जी
0: तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है अभी, छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था CNG की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी PM E-Drive के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशन का भी हम लॉन्च करेंगे और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहाँ पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में।
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी से हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सबके साथ भी गवर्नमेंट टाई अप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं कितनी बार रुकूंगा
1: जी
0: हाईवे
1: जी
0: पे, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं। उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूँ तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो, और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा। और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। और ये भी कर दिया अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे या मर्सिडीज हो गए, BMW हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप है, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूँ कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहाँ किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में जैसे NCR नोएडा हो गया जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो RWs हैं वो लोग मना कर देते हैं, कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है। हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के कि भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा या कभी, वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं। बट फिर भी लोगों के माइंड में रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चन करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में घर के साइड में,
1: जी
0: तो वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है उनका मकान है उसके साथ साथ में अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजिली आप अवेल कर सकते हैं।
1: जी
0: स्पेशली टू व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, टू व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग ऑफ बैटरी ऑलरेडी है ही और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या टू व्हीलर को।
1: जी बहरहाल हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं रोनेंद्र ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। जैसे किसी में 10-20 हजार रुपए का बस फर्क होगा जो कि हमारे सीएनजी और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था
1: जी।
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना एसी चला रहे हो कितने स्पीड में चला रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहे होंगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाए क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे एसी ऑन होगा आपका तो ये होता है कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवेज में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतनी बढ़िया बढ़िया हाईवेज बना दिए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ी जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे 350 एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 350-350 किलोमीटर कवर करना है तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं ईवी क्रांति हो चुकी है, आप इसके सहयात्री कब बनेंगे ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेंद्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोनेंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपनो राजस्थान।

कुण कहवे मायड़ भाषा में गीत गोरी अर साजन राई होवे। कुण कहवे गीत तीज अर त्योहार राई होवे। कुण कहवे गीत सिंगार राई होवे। कुण कहवे गीत सावन भादवे राई होवे। आ मायड़ भाषा है, इनमें गीतारी इतनी लूठी परंपरा है कि इनमें न्यारा न्यारा पंछीड़ा ने भी घने मान संगीता में गाई जिया है। मायड़ री ई मिठास रो करा काई बखान। मायड़ री ई मिठास रो करा काई बखान। सगड़ा रेल मिल ने सुना आपनो राजस्थान। मायड़ भाषारी स्तुति करता थका, आपने बतायो के वो कार्यक्रम है आपनो राजस्थान। और आ प्रस्तुति है आकाशवाणी जोधपुर री। कार्यक्रम लेन हाजिर है कल्याण विश्नोई। आपने निजर करा कार्यक्रम रो पहलो गीत।

श्रोतावा उड़ती कुरजारे संग साजन ने संदेश भेजन री रीत मायड़ भाषा में है। तो कागला रे बोलने ने मेहमान रे आवण रो संकेत मान्यो जावे। गोरी कागा ने उड़ावती कहवे, कागा तू जा अर म्हारे साजन ने घर आवण रो

सावन रो महीनो, झमाझम बरसात, एकली गोरड़ी, अरे एड़े में मोर यारो बोलनो, कालजा में कटार सो कम कोनी। एकली गोरड़ी मोरिया ने ओलबो देवे तो मोरियो भी गोरड़ी ने गीत गाओ तो पड़ुतर देवे। मायड़ भाषा रे गीता में पंछेड़ासु संवाद री रीत घणी पुरानी है।

मायड़ भाषार आम बोली चाली में मोर अर पपैयरा नाम एक साथ ही लिया जावे। कबूतरी जो ही पपैयो भी परदेसी री खबरां लावण वालो पक्षी है। तो आओ आपा सुना के मायड़ रे गीता में पपैया ने की कर गाई जाए।

श्रोतावां जित्ती मिठास मायड भाषा री है, उत्ती मिठास कोयल री बोली री भी है। अरे मिठास रो नाम ही है आपनो राजस्थान। श्रोतावा आज आपा सुना हा मायड भाषा रे गीता में पंचिड़ा रे बखाण रा गीत। कोयल सु इत्तो हेत है के सासरे जावती बेटी ने भी कोयलड़ी के

गांव गवाड़, घर आंगन में आखे दिन फुदकती रहने वाली चिड़कली ने हिंदी भाषा में गोरैया कहवे। चिड़कली

पाछों इतरो लगाव है के इनरे बिना आंगणो सुनो लागे। बाग बगीचार खेतारी शोभा बढ़ावण वाली चिड़कली ने भी गीता में गाई जे है।

यूं तो घना ही पंछी है, अरे घना ही गीत है, पण आओ आपा चालता चालता सुना कार्यक्रम रो आखिरी गीत। गीत है सुवटियो। सुवटियो आपरे हरे रंग और प्यारी बोली दी खातिर आपरी न्यारी पिछाण राखे, और इन पिछाण रे साथ ही गीता में इनने गोरी रो एक प्यारो साथी मान्यो है। तो आपने निजर करा ओ गीत।

0: श्रोतावां ओहो कार्यक्रम आपणो राजस्थान आकाशवाणी जोधपुर री प्रस्तुति और मैं हूं आपरे सागे कल्याण विश्नोई। तो अबे दिराओ सीख राम राम।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। रात के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:05:14 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें कीजिए विदा। जय हिंद।